नाजुक जैसे कंवारी कलियां होंठ ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां सामने इनके फीकी बाकी सारी

0: बदले का क्या होगा हाय हाय।
1: 这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि सांप्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निजसम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागितास्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्तस्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वयसमितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। 8 अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86+8,000 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27,200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।

0: के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर

0: न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
3: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
4: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
5: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और

बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच

0: घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-3401-0111-3341-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन बिश्केक ऑन अ 2-डे विजिट टू किर्गिस्तान टू अटेंड SCO समिट एंड मीट सेवरल SCO लीडर्स ऑन द साइडलाइंस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasim Aliyev at

नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान के दो दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। वज़ीरों की काबीना के चेयरमैन कासिम अलीफ आदिल बेग अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के खैर मकदम के लिए रिवायती किर्गिज़ रक्स का भी एहतमाम किया गया।

0: जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिजिस्तान के सदर सदिर जपारूव की दावत पर वहां गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर SCO रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी कई दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे और कल SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनाब मोदी आज बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्समे पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। साल 2015 में किर्गिजिस्तान के अपने दौरे के मौके पर वजीर आजम ने इस मुजस्समे की नकाब कुशाई की थी। जनाब मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस के सदर के साथ बाहमी बातचीत के साथ साथ आर्मेनिया, किर्गिजिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी आज छठे वर्ल्ड नामोड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कल शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताशकंद का अपना दो रोज़ा सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कल दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाने के लिए सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक जामे दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तफाक किया। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: इस दौरे में 11 माहदों पर दस्तखत किए गए जिनका ताल्लुक अहम मादनियात और यूरेनियम से लेकर तिजारत, दिफा, डिजिटल वसीले से रुपए पैसे के लेन देन और तालीम, नीज हिंदी और संस्कृत से लेकर खेलकूद और विरसे के तहफ़ से है। इस दो रोज़ा दौरे से भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक वसी और जामे फ्रेमवर्क मिला है। उम्मीद है कि जामे दिफाई शराकतदारी और $5 अरब के तजारती निशाने तवील मुद्दती तवानाई ताउन और रियासत और शहर की सतह पर मजीद सरगर्मियों की वजह से उज़्बेकिस्तान और वस्त एशियाई खत्ते के साथ भारत की सरगर्मियों को एक नई रफ्तार हासिल होगी। इस दौरे की एक अहम बात यह भी रही कि सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज़ ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्तलिक से नवाजा। इस अवार्ड के तहत भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और ताउन को मुस्तहकम बनाने में जनाब मोदी के ताउन का एतराफ़ किया गया है। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज़्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई नीज़ आबनाए हुरमुज़ को बंद किए जाने के तनाजुर में जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की कैफियत और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों के बावजूद उम्मीद है कि भारत अपनी तरक्की की रफ़्तार बरकरार रखेगा। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मगरबी एशिया महाजाराई की वजह से आबनाए हुरमुज में खलल पड़ने से शुरू में भारत के लिए खाम तेल, पेट्रोलियम अशिया और कीमियावी खाद जैसी अहम अशिया की सप्लाई पर असर पड़ा था, लेकिन मुल्क इन अशिया को दूसरे रास्तों से लाने का बंदोबस्त करने में कामयाब रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगी। वो इस मौके पर मुल्क भर के 18 NIFT कैंपस के ग्रेजुएशन के तलबा को डिग्री अता करेंगी। कपड़े की सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और कपड़े की सनतों की वजारत की सेक्रेटरी नीलम शामी राव भी इस मौके पर मौजूद होंगी। इस तकरीब में दीगर मुमताज़ शख्सियतें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान, सीनियर अफसरान, असातिज़ा, दानिश्वर हजरात और तलबा शिरकत करेंगे। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब

0: अब से मरने वालों की तादाद 794 तक जा पहुंची है और 2500 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तिब्बत में 16 अफराद हलाक और 546 लापता हैं। भारत और चीन समेत बचाव टीमें पनबिजली प्रोजेक्टों की सुरंगों में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रोजेक्टों में त्रिशूली 3A भी शामिल है। लापता लोगों के बारे में ख्याल है कि ये लोग पनबिजली प्रोजेक्ट का रुकन हैं। सभी 8 मुतासरा ज़िलों से लाशें बरामद कर ली गई हैं। जैसा कि बचाव कारकुन अब भी बाकी मादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसी दौरान त्रिशूली दरिया में ताज़ा सैलाब से गोरखा ज़िले में झूलने वाला पुल बह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी शाहरा के मकी अलग थलग होकर रह गए हैं। नेपाल में शदीद सैलाब आने और नशीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के तनाजुर में बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक और कोसी बैराज के 20 फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इन दोनों दरियाओं में पानी की सतह और उनसे छोड़े जाने वाले पानी की मकदार भी कम हो गई है। इधर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली गुमराहकुन इत्तलात के तनाजुर में सुपौल जिला इंतजामिया ने यह वजाहत की है कि कोसी दरिया में पानी मामूल की रफ्तार से चढ़ रहा है और कोसी बैराज पूरी तरह महफूज है। सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी की सतह में और इजाफा होने के इम्कान के मद्देनजर मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों की इंतजामिया सख्त चौकसी बरत रही है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के ज़ेर असर उड़ीसा में आज भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने बरगढ़ में रेड अलर्ट जबकि मगरबी उड़ीसा के कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बारिश ऐसे वक्त हो रही है कि जब केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर के बाज़ हिस्से हालिया सैलाब के असर से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। इस तरह निचले इलाकों में फिर से पानी भर जाने के ताल्लुक से तशवीश पैदा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा को आज फिर मूसलाधार बारिश का सामना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बहुत सी जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश की भी पेशगोई है। आज बारगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, क्योंझार, सुवर्णपुर, नुआपाड़ा, बालनगीर और कालाहांडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश की वजह से मकामी सतह पर नशेबी इलाकों में सैलाब आ सकता है और पानी भर सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय बहरिया आज मुंबई में बहरी गोदी में निपुण जहाज को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये निस्तार दर्जे का दूसरा गोताखोर इमदादी जहाज DSV है। निपुण को कामकाज में शामिल किए जाने से भारत के बहरी मफादात वाले खसूसी गोताखोर और जेरेआब मिशनों को जारी रखने की भारत की बहरी सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: निपुण को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने मुल्क ही में डिजाइन और तामीर किया है। ये बहरी जहाज दिफाई जहाजों की तामीर में भारत की खुद किफालत के मैदान में एक अहम संगी मील की हैसियत रखता है। निपुण खसूसी तौर पर गोताखोरी और जेरेआब कार्रवाइयों के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज गोताखोरी के जदीद तरीन निजाम से लैस है, जिसमें समुन्द्र में जेरेआब हथियारों को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इस जहाज में समुन्द्र में खसूसी हालात में गोताखोरी को मदद देने की भी सलाहियत मौजूद है। निपुण से जेरेआब बचाव कार्रवाइयों में मदद देने की भारतीय बहरिया की सलाहियत में भी इजाफा होगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: अमरीका ने कल रात आबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी फोर्सेस के मुताबिक ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी के फौजियों को आबनाए हुरमुज में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागने की तैयारी करते हुए देखा गया था। इसी के बाद ईरान के दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया है कि इस हमले में कई ईरानी अहलकार और सिविलियन हलाक और जख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए اردن میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغے. دونوں طرف کے ان حملوں سے محاذ آرائی میں پھر سے شدت آ گئی ہے. اس سے قبل امریکی فوج نے

0: अपनाए हुरमुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद ईरान को ये सख्त वार्निंग जारी की है कि इस आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने में मुलविस किसी भी बहरी जहाज या कश्ती को बिला ताखीर और मुनज़्ज़म अंदाज से तबाह कर दिया जाएगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेज़ी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फ़ोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बैंकिंग और कर्ज की फराहमी के ज़रिए माली शमूलियत में इजाफे और शहरियों को बाख्तियार बनाने के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नशर करेगा। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज़ किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सिक्किम निशानेबाजों ने 13वीं शुमाल मशरकी जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम दी है। ये चैंपियनशिप कल आसाम के शहर गुवाहाटी में इख्तिताम पजीर हुई। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मास्टर मुकाबले में इनफरादी जुमरे के तहत कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर तनाकू मुरहिस ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया कलीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान के दौरे की तकमील की खबरें सरेबख्श शाये की हैं। अखबार इनकलाब के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान यूरेनियम की सप्लाई का मुआहदा। वजीर आजम मोदी को उज़्बेकिस्तान के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर भी आज के अखबार में नुमाया है। जनाब मोदी आज शंघाई तआवुन तंजीम में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि वो किर्गिज़स्तान की राजधानी बिश्केक में आज चीन के सदर शी चिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। अखबार इनकलाब के मुताबिक सियासी जमातों के नकद अतियात के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। दरख्वास्त में इनकम टैक्स कानून की उस शिक को चैलेंज किया गया है जिसमें सियासी जमातों को 2,000 रुपये से कम के नकद अतियात गुमनाम तौर पर वसूल करने की इजाज़त है। इसी अखबार ने एक खबर यह भी खास तौर पर शाये की है कि दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होगी। अगर किसी वोटर या उसके किसी जानने वाले का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो उसे दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।
0: खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इकतसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है जबकि 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकंड। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक से धमार गायन, राग है ललित। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना उदय कुमार मलिक से धमार गायन राग था ललित। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आवर गेस्ट।

बारिश का मौसम निकल गया। निकल गया यानी रफ्त, बारिश का मौसम निकल गया, फैसले बारोन रफ्त। पतझड़ का मौसम है, पतझड़ यानी पाइज बैरग्रीजोन, फैसले पाइज आस्त, पतझड़ का मौसम है। दिन छोटे हो गए, रोज हो कूतो शुद, जाड़ा है सर्द अस्त, जाड़ा सर्द या जमिस्तान, सर्दी है सर्द अस्त, हवा सर्द अस्त, हवा ठंडी है बहुत खुनक अस्त, कोहरा है, कोहरा यानी मैं आलूद अस्त, हवा मैं आलूद अस्त या बेह अस्त। बर्फ गिरेगी, बर्फ खواهد बारीद, जल्दी ही शाम हो जाती है, जल्दी ही शाम हो जाती है, जूद आश्र मी शवद, जूद आश्र मी शवद। चांदनी रात है शबे महताब अस्त, चांदनी रात है, पूर्णिमा है, पूरा चांद है यानी माह तमाम अस्त, माह कौमिल अस्त। आज बारिश होगी, एमरूज बारान खाहद आमद, आज बारिश होगी, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। चिनिन मी नमायद, चिनिन मी नमायद, हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है, बहुत बेस्योर तुंदस्त। धोबी नहीं आया, धोबी यानी रैख चू नयामदे, धोबी नहीं आया। तुम मेरी पैंट देर से लाए, पैंट शलवार, शलवार मरो दीर ओवर दी, तुम मेरी पैंट देर से लाए। तुम बहुत खराब धोते हो, बिस्योर बैद मीशुई, धोते हो मीशुई, तुम बहुत खराब धोते हो, बिस्योर बैद मीशुई। तुम अच्छा धोते हो, तुम अच्छा धोते हो, खूब मिशुई, तुम अच्छा धोते हो। स्त्री ठीक से नहीं की है, स्त्री यानी ओतो खूब न खैर देई, स्त्री ठीक से नहीं की है, ओतो खूब न खैर देई। यह कमीज जला दी, इन पेराहन रसूखती, यह कमीज जला दी, यह रूमाल मेरा नहीं है, रूमाल दस्तमाल रमीगुयान, इन दस्तमाल मौल मैं नीस्त, यह रूमाल मेरा नहीं है। तुम ये मोजा फाड़ लाए, इन जोराब रो दरी दई, इन जोराब रो दरी दे आवर्दी, मोजा जोराब। हिसाब करो, हिसाब कौन, हम दूसरे धोबी को कपड़े देंगे, मौ बिरख्त छू ये दीगारी रख्त खाहिम दौत, हम दूसरे धोबी को कपड़े देंगे। भारत एक विशाल देश है, विशाल यानी वसी पहनावर, हिंद केशवरीस्त वसी, हिंद केशवरीस्त पहनावर। भारत एक विशाल देश है, भारत हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि मादर वतन यानी मीहन, भारत हमारी मातृभूमि है, हिंद मीहन मोस्त। भारत एक महान देश है, हिंद केश्वरे बुजुर्गीस्त, महान यानी बुजुर्ग या महीन। सब जीवों में आदमी का पद सबसे ऊंचा है, सब जीवों में आदमी का पद सबसे ऊंचा है, इंसान अशरफुल मखलूकात अस्त। तर्जुमे लफ्जी इन अस्त, सब जीवों में अस जुमले तमाम मखलूकात आदमी का पद मकाम आदम सबसे ऊंचा है, बौलातरीन अस्त। यह विषय विचाराधीन है, विचाराधीन तहत बर्रसी, इन मौजू तहत बर्रसी भी बौशद, विषय यानी मौजू, यह विषय विचाराधीन है। सूचना इकट्ठी की जा रही है,

गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मुझे कुछ कहना है। मैं नहीं देख सकती किसी को उदास, बुझाती हूँ आंखों से आंखों की प्यास। शराब नहीं हूँ मगर

दोस्तान ग्रामीण तरानीबुद बासद ये मन्ना दे अश्विन में चिंगारी वहीनक तराने डिगर बासद किशोर अश्विन में शर्मीली तवज्जो फरमाएत।

0: राही हो अनजाने मंजिल से बेगाने
1: दूसरगामी बहनों में ये तरह है ये फिल्म हिंदी बेमजो बेपन मेरे साथ वही ना अखबार जहन रो तब जहन माइट अखबार जहान गोविंदे नईमुद्दीन कुरैशी आर्टिश अमरीका बैद यक दसगाह पैताब कुनंदे ये रॉकेट ईरानी दर तंग हरमूज हमले का दान इन अवलिन हमले की नोय खुद दर्फ यक माह गुजशत में बौशात खबर गुजारी निम रस्मी ईरान गुजारिश नमूदे के सदा ये इनफिजार डर नजद जजीर ये लौराक डर तंग हरमूज शनिद सुदयास्त पैदरान इनकलाबी ईरान गुप्तान के दर हमले ये अमरीका बिसियारियाज जंगजुया ने ईरानी व गैर निज़ामियान कुश्ते शुदयान उन्हों कसम खुदान के बे हमले कुनंदगान पासु के सरसात खान दाद ते ये बयान यही असरफ साजमान सुगन बगानी ईरान पैदरान इनकलाबी तहदी नमदान के इन हमले मुजीब पादाश सरसख्त ईरान ख्वाहशोर पैदरान इनकलाबी राजब तादाद कुश्तगान चीजी न गुप्तान दर मुसाक ये जाम जहानी ये हॉकी मैदान साल 2026 मिला थी टीम आलमान दर मुसाक ये नियाई दर बेल्जिक टीम स्पानिया राशिकत दौदे जाम जहानी रा नसीब खुद साख्तियाज इन मुसाक दिरूज बेमल आमद माइकल तनहा गुल मुसाक राजत के दर दोमेन रुब बेअमल आमद टीम स्पानिया गचे सरसख्त मुसाक नाकत बाद इन टीम आलमान बरा चारोमिन दर इन मुसाब के मोफक सुदयास पस आज पायन वसंदन ने बाजी दे दुरुजयास आज उज्बेकिस्तान नगोज वजीर हिंद नरेंद्र मोदी बरा शिरकत नमूदन दर बिस्तुशमिन कॉन्फ्रेंस सरा ने साजमा ने हमगारी शिंगाई दर पाख्त बिशेक वारी दे जमहूरी ये किर्गिस्तान सुदयास दौरान बाजी दे दुरुजयाज अजुन किश्वर आसिया ये मरकजी नगोज वजीर हिंद बराबरा ने किश्वर हो ये उज्व एस सी ओ दर हाशी ये कॉन्फ्रेंस

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

Poli. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظموه.

يد الله فوق

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज़िस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिज़िस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू
2: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा और रेनू
1: मेरा
2: आपका भी।
1: ना, प्यार भरा नमस्कार
2: जी।
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। तुम कर पल्लव झंकृत सितार, मैं व्याकुल विरह रागनी, तुम पत हो मैं रेणु,
2: तुम हो राधा के मनमोहन, मैं उन अधरों की वेणु, तुम पथिक दूर के
1: शांत, और मैं बाट जोहती आशा, मैं बाट जोहती आशा।

0: दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और बात नीति शास्त्र की, तो नीति शास्त्र के अनुसार किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से, अपने मन से 3 प्रश्न पूछा जाए। पहला, कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यानी इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए।
1: और फिर दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, यानी भविष्य का आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा प्रश्न जो स्वयं से पूछा जाना चाहिए दोस्तों, वो ये है, क्या मैं इसमें सफल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। यानी आत्मूल्यांकन, अपनी क्षमताओं का ईमानदारी से आकलन करना, यही है सफलता का मूल मंत्र। और इसी से जुड़ा हमारा आज का प्रश्न भी है।
0: हमारा आज का प्रश्न है कि आपको बताना है कि आपके अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के आपके अपने अनुभव क्या हैं। और
1: और दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है वही, fmgoldga@gmail.com।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी अखियों के झरोखों से, आवाज़ थी हेमलता और शैलेंद्र की। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखियुल की चिंगारी बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। ये उद्गार है हिंदी और पंजाबी की प्रख्यात कवित्री लेखिका अमृता प्रीतम के।
1: जी, और अमृता जिन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया अपनी शर्तों पर, अपनी मान्यताओं पर, वो हमेशा स्त्री आज़ादी का एक संपूर्ण प्रतीक बनकर रहीं। वे एक विद्रोही लेखिका थीं जिन्होंने अपने जीवन के हर एक शब्द को पूरी निर्भीकता और स्वायत्तता के साथ जिया।
0: वो भी उस समय जब सब कुछ इतना आसान नहीं था, बल्कि उसके लिए लड़ जाना होता था, जिद पर अड़ जाना होता था, जैसा अमृता ने किया। वो अपने बारे में अपना पता बताते हुए स्वयं कहती हैं कि जहां आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वो मेरा घर है। पंजाबी भाषा की पहली प्रमुख कवित्री और लेखिका अमृता का लेखन भावनाओं, संवेदनाओं और प्रेम से ओतप्रोत रहा। वो जैसी थीं उन्होंने वैसा ही लिखा, बगैर किसी आवरण के। अमृता के लिए आज़ादी का मतलब था भावनात्मक आज़ादी और फिर सामाजिक आज़ादी। उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए ये दोनों आज़ादी हासिल की।
1: और जो पीड़ा उन्होंने अंदर महसूस की उस दौर की, और महिलाओं पर जो उन्होंने देखा, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए उन्होंने वारिस शाह को संबोधित करते हुए बेहद मार्मिक और अमर कविता लिखी, अज आखा वारिस नशानों, जो पंजाब की सांझी संस्कृति के टूटने और लाखों बेटियों के दर्द को दर्शाती है। उनकी भाषा और चिंतन में पंजाब की मिट्टी, सूफी संतों की उदारता और मानवता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट और उपन्यास पिंजर सच्चाई और साहस के अनूठे दस्तावेज हैं। कोरे कागज, सागर और सीपियां, 49 दिन, उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं।
0: उनकी रचनाओं में पीड़ा, विद्रोह और निश्चल प्रेम का अत्यंत संवेदनशील और यथार्थवादी चित्रण मिलता है। वो पंजाबी साहित्य

0: आदमरी फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में। और आज है कजरी तीज, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला ये त्यौहार प्रतीक है सौभाग्य, सुहाग और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का, जिसे सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं।
1: जी, आज के दिन विशेष की बात हो रही है और मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसी तृतीया तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।
0: जी, और इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता गौरी के भवानी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती को सुहाग की 16 सामग्रियां जैसे सिंदूर, चूड़ियां, रोली आदि जो अर्पित की जाती हैं, और ताकि वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहे। इस त्यौहार का संबंध सावन भादों में घिर आई काली घटाओं से भी है, जिसमें महिलाएं एकत्रित होकर पारंपरिक कजरी गीत गाती हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर इस समय नवविवाहित मायके में आने की उनकी परंपरा है और विरह और प्रेम को की अभिव्यक्ति का सुंदर चित्र खींचते हैं ये कजरी गीत।
1: जी, और इस उत्सव में दिन भर निर्जला या जलीय व्रत रखकर महिलाएं जो है 16 श्रृंगार करती हैं और अर्घ्य देखती हैं शाम को चंद्रमा को। और इस प्रकार रेणु जो इस त्यौहार का जो संबंध है वो प्रकृति से है। भाई, नीम के पेड़ पर या उसकी डाली को देवी नीमड़ी माता मानकर पूजा जाता है। देखिए, आजकल जो है तरह तरह का फ्लू फैला हुआ है ना,
0: जी, जी।
1: तो देखिए हमारे जो पर्व हैं और त्यौहार है वो हमारी संस्कृति जो है वो सीधा प्रकृति से जुड़ी है। नीम का इस समय प्रयोग करना चाहिए ताकि आप तरह तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनसे बच सकें। और जो नीमड़ी माता है उनकी जो पत्तियों से जो आपने बता रही है ना, नीम रोग जो रोगनाशक
0: हाँ।
1: है और वातावरण शुद्ध करने का भी काम करता है, तो उसकी पूजा करना का अर्थ है कि उनको जीवन में उतारना, अंगीकार करना, स्वीकार करना, ताकि आपका परिवार बीमारियों से दूर रहे और उत्तम स्वास्थ्य जो है उसको मिले।

0: दुल्हन एक रात की, इस फिल्म से आपने ये गीत सुना। फिल्म थी, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जी। और रेनू, आज जो क्वेश्चन हमने पूछा था, प्रश्न पूछा था कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, आपके अपने अनुभव क्या हैं, और ईमेल आईडी थी fmgoldga@gmail.com और fmgold@delhi@gmail.com। और हमारे पास श्रोताओं के, सुनने वालों के बहुत सारे जवाब आ गए हैं, ईमेल आ गई है, तो क्यों ना हम पढ़ दें।
0: हाँ बिल्कुल। और मेरे पास ये जो पहली मेल मुझे मिली है, ये है नवीन भाटिया की, एज इट इज, जैसा कि वो हमेशा पहले लिखते हैं। और उन्होंने लिखा है कि कड़ी मेहनत और लगन और साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद और उसमें उस पर अटूट विश्वास, ये है सफलता का मूल मंत्र उनके अनुसार।
1: जी। और राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी, वासी सार, हरियाणा से कह रहे हैं कि हर इंसान में कोई प्रतिभा या कोई कमी अवश्य होती है, अपनी प्रतिभा को पहचान कर निखर कर आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए, ये कुछ नहीं कह सकता, और ऐसा ऐसा सोचकर कमज़ोर ना करें। और पता नहीं आप कहाँ कहाँ से इतने बढ़िया गीत सुनते हैं और अपनी मेहनत से निकाल कर लाते हैं, मतलब तारीफ़ कर रहे हैं, तो
0: हाँ
1: उसका धन्यवाद हम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली मेल।
0: अगली मेल है मेरे पास, ये भी नियमित श्रोता है हमारे, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी और शांति नगर से सोनीपत से ये लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि समय का सदुपयोग और अच्छी सोच से जो है वो सफलता मिलती है। तो समय का सदुपयोग तो सही बात है रश्मि जी, समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर समय
1: जी।
0: पर हर काम करते हैं तो सफलता तो निश्चित है।
1: और गौरी शंकर जी नागलोई से कह रहे हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करोगे सफलता अवश्य मिलेगी, अगर एक काम में कामयाबी न मिले तो दूसरे काम में भी कोशिश करो, समय ज़रूर लगता है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बातें सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। और इसके अलावा एक और हमारे पास जो मेल आई है वो है अलमास महाराष्ट्र से, कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सफलता का मूल मंत्र है लगातार चलते रहना, क्योंकि थमता वही है जो हार मान लेता है। और एक और हमारे पास जो मेल आई है वो है उमेश कुमार खयाला से, वो कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत और सही दिशा और धैर्य से काम करना। जी, बहुत हमारे श्रोता हमें सिखा

0: हैं, हम सीखते हैं अपने श्रोताओं से। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी से अपना भाई मोबाइल आपके हाथों में, अपना मोबाइल का मेल बॉक्स खोलिए और फटाफट कर दीजिए मेल जवाब कि आपके हिसाब से सफलता का मूल मंत्र क्या है। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: जी बिल्कुल। और सफलता तो देखिए कुछ कुछ अपने अपने ऊपर तो निर्भर होती ही है, परिवार के संस्कार और जो परिवार उसके पीछे होता है, माता पिता की जो सीख होती है वो भी बहुत कुछ कारण होती है। ऐसी ही बात आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि बच्चे के अगर अच्छे संस्कार दिए जाएं, परवरिश दी जाए, तो बच्चों में स्वतः ही संस्कार और अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है। झारखंड की धनबाद की रहने वाली ऐसी ही दो सगी बहनें हैं, प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल, जिन्होंने अपने घर से मिले संस्कारों की खुशबू पूरी दुनिया में बिखेर दी। जी हाँ, इन दोनों बहनों ने अभी हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का ऑनलाइन सस्वर पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
0: जी, और क्योंकि देखिए अभी हम रक्षाबंधन का त्यौहार अभी मनाया है और आने वाला जो ये सप्ताह है इसमें जन्माष्टमी मनाया जाएगा, तो अभी गीता की चर्चा के बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वैश्विक ऑनलाइन गीता का ये ऐतिहासिक ऑनलाइन कार्यक्रम जो है सेंट्रल चिन्मय मिशन द्वारा आयोजित किया गया था, इसके दुनिया भर में बहुत सारे प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसमें ये दोनों बहनें शामिल थी। उत्कृष्ट और सटीक पाठ के लिए गिनीज बुक की ओर से दोनों बहनों को आधिकारिक प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।
1: बिल्कुल। और प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल की असाधारण सफलता के पीछे उनके माता पिता की अनूठी परवरिश और घर का आध्यात्मिक माहौल है। उनके घर में पिछले 6 वर्षों से लगातार गीता पाठ और आध्यात्मिक प्रवचन होते रहते थे, जिससे दोनों बहनों ने इन कठिन श्लोकों को खेल खेल में ही आत्मसात कर लिया। फिर माता पिता के मार्गदर्शन से दोनों बहनों ने कठिन अभ्यास किया और इसी का परिणाम था कि उन्होंने शब्दों की पूर्ण शुद्धता और सटीक उच्चारण के साथ महज 5 मिनट में गीता के 15वें अध्याय का पाठ शुरू कर लिया।

0: गोपाल कृष्ण फिल्म से भी आपने सुना हेमलता को, और दिल्ली जिसकी फिजाओं में हमेशा साहित्य और कला रची बसी रही है, एक बार फिर उसे महसूस करने का अवसर मिलने वाला है। जी हाँ, दिल्ली में रचनात्मकता का एक नया उत्सव शुरू होने जा रहा है, दिल्ली कंटेम्प्रेरी आर्ट वीक। इंडिया गेट के पास स्थित ऐतिहासिक बीकानेर हाउस में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला ये आर्ट वीक दिल्ली और दक्षिण एशियाई समकालीन कला को बढ़ावा देने वाला सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक है।
1: और इस आयोजन में दिल्ली की 6 प्रमुख जो महिलाओं द्वारा संचालित आर्ट गैलरी है वो एक साथ मिलकर समकालीन कला शैलियों का प्रदर्शन कर रही हैं। और जो इस साल की प्रदर्शनियों में जलवायु, पर्यावरण, पहचान, स्मृतियों और विस्थापन जैसे गंभीर विषयों को मूर्तियों, पेंटिंग्स और फोटोग्राफी के जरिए उकेरा जाएगा। और इस पर 2 विशेष क्यूरेटेड प्रदर्शनियां भी शामिल हो रही हैं, यानी वो प्रदर्शनी जो विशेषज्ञ द्वारा एक खास थीम, कहानी या विचार के आधार पर तैयार की जाती हैं। और सुनने वालों को बता दें कि इसके अलावा इस इवेंट के दौरान यहाँ आर्ट लवर्स के लिए क्यूरेटेड वॉक थ्रू कार्यशालाएँ और विचार विमर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
0: बिल्कुल, तो अगर आप इस कला की अनूठी दुनिया को करीब से देखना और महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ जाने के लिए हम बता दें कि एंट्री बिल्कुल फ्री है, यानी आपको कोई टिकट नहीं लेना है। लेकिन यदि आप आर्ट एक्सपर्ट्स के साथ पूरी प्रदर्शनी को समझने के लिए पब्लिक वॉक थ्रू में शामिल होना चाहते हैं तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और समय भी रश्मि जी एक बार बता
1: जी
0: देते हैं हम
1: बिल्कुल,
0: श्रोताओं को, समय है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहाँ जाकर कला की इस दुनिया का अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए।

0: आशा भोसले और रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी बम्बई का बाबू।
1: और हमने प्रश्न पूछा था रेनू, सफलता का मूल मंत्र क्या है? और हमारी जो मेल थी वो थी
0: fmgold@gmail.com।
1: जी, और एक और मेल आ गई है हमारे पास। तो कामायनी हमें कह रही है कि मेरे विचार से सफलता का मूल मंत्र है खुद पर भरोसा रखना। कई बार आप अपने पर भरोसा ही खो देते हैं, लेकिन आपका भरोसा ही आपको सफल बनाता है। और इसके अलावा भी मेरे पास मेल्स आ गई हैं, और ये बता रही हैं सुरभि, वो कह रही हैं कि भाई सफलता का मूल मंत्र जो है वो है कि नतीजे की चिंता मत कीजिए, सफलता एक दिन खुद आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। ये तो वही बात हो गई, हमने अभी गीता की बात की थी
0: बिल्कुल,
1: कि
0: नीति शास्त्र में कहते हैं कि सफलता का कोई जो है वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, आप
1: जी,
0: उसको
1: गीता कहती
0: आकलन
1: है
0: करते हैं।
1: कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे साथ राघव जुड़ गए हैं दिलशाद गार्डन से, वो कह रहे हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाना उसका सबसे आसान रास्ता है। तो आप भी जल्दी से अपना मोबाइल खोलिए और मेल कर दीजिए हमें, सफलता के बारे में अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए। और हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
0: जी बिल्कुल, और बात करते हैं अब कार्यक्रम में आगे केरलम के सबसे अनोखे प्रसिद्ध मंदिर मन्नारशाला की।
1: जी
0: मन्नारशाला नाग मंदिर, ये स्थान अपनी सदियों पुरानी परंपराओं, घने जंगलों और विशेष मान्यताओं के लिए जाना जाता है। पौराणिक काल के इस ऐतिहासिक मंदिर की सांस्कृतिक परंपराएं पूरी दुनिया में अनूठी हैं।
1: जी और इस मंदिर परिसर के चारों ओर जो फैला हुआ घना जंगल है ना, उसके रास्तों पर नाग देवताओं की 30,000 से अधिक पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। ये भारत में सर्प मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पूजा पाठ का सारा काम जो है वो पुरुष पुजारी नहीं करते, बल्कि एक महिलाएं संभालती हैं, और उन्हें भक्त आदर से मन्नारशाला अम्मा कहते हैं। और परिवार की जो सबसे बड़ी बहू होती है ना, वही बनती है यहाँ की मुख्य पुजारी। और ये पवित्र स्थान जो है वो कहते हैं अगर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगनी हो और अनूठी परंपराओं के कारण जो भक्त हैं उनके बीच में गहरी आस्था का ये केंद्र है।
0: बिल्कुल, और अक्टूबर नवंबर यानी मलयालम कैलेंडर के अनुसार जो तुलाम महीने के आइलम नक्षत्र पर यहाँ सबसे बड़ा और भव्य उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा कन्नी महीने यानी सितंबर अक्टूबर की आइलम जो नागराज का जन्मोत्सव माना जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दिन नागराज और नाग यक्षी की मूर्तियों को एक भव्य सांस्कृतिक जुलूस में मंदिर के पुश्तैनी घर ले जाया जाता है जिसका नेतृत्व करती है मन्नारशाला अम्मा। सांस्कृतिक रूप से मन्नारशाला केरल की प्राचीनतम सर्प कापू यानी कि सर्प उपवन परंपरा का प्रतीक है, और ये परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति, घने जंगलों और जीवों विशेषकर सांपों की रक्षा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो आप जब भी केरलम की यात्रा की

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तेरे मेरे सपने। और बात संगीत की हो ही रही है तो संगीत की दुनिया की साउंडस्केप ऑफ इंडिया, यह है म्यूजिक शोकेस का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो इन दिनों चल रहा है नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, और आज है उसका आखिरी दिन।
1: और भाई संगीत के इस महाकुंभ में भारत के में जो है अब 15 से अधिक राज्यों से बहुत सारे बैंड और 150 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही इंडोनेशिया, मिस्र और नेपाल और यूके जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
0: इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संगीत की विविधता को वैश्विक मंच पर लाना और कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रमोटर्स और फेस्टिवल बुकर्स से जोड़ना है। इसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक आदिवासी लोक संगीत से लेकर समकालीन स्वतंत्र संगीत की उन अनसुनी आवाज़ों को सामने लाना है जो मुख्य धारा से दूर हैं।
1: और यहाँ पर जो होगा विशेष लाइव प्रस्तुतियाँ होंगी, पैनल चर्चाएं होंगी, नेटवर्किंग सत्र होंगे और ग्लोबल म्यूजिक डेलीगेट्स के साथ बिजनेस मैच मेकिंग जैसी गतिविधियां भी होती हैं। इस बार की जो थीम है ना रेनू, वो है जॉय ऑफ डिस्कवरी, और इस थीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संगीत प्रेमियों और वैश्विक इंडस्ट्रियल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कुछ नया और अनूठा खोजना है। तो दोस्तों, अगर आप भी संगीत की दुनिया की गहराइयों को समझना चाहते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत का आनंद लेना चाहते हैं एक ही जगह, तो भाई जाइए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और इसका भरपूर आनंद लीजिए। और यहाँ पे

प्रवेश पूरी तरह से फ्री है और यहाँ जाने के लिए आपको कोई टिकट भी नहीं खरीदना है, लेकिन भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा। और यदि आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ और सुनते रहिए मधुर संगीत और उसका आनंद लेते रहिए।

0: ये मीठा सा गीत सुना आपने। फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आंखें, और आवाज़ सुमन और मुकेश की। और लक्ष्मी जी, वैसे तो समय अब हमारी समाप्ति की ओर है कार्यक्रम का, लेकिन फिर भी एक मेल ले लेते हैं। ये मेल है इदरीस सैफी जी का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, और लिख रहे हैं ये कि आत्मविश्वास, मेहनत और कोशिश, यही है सफलता का मूल मंत्र
1: जी,
0: इनके अनुसार।
1: बिल्कुल। और साथ में हम तो ये कहेंगे गिरकर उठना सीखिए, क्योंकि असफलता भी सफलता की तो तैयारी ही करवाती है। मेहनत के साथ धैर्य बनाए रखिए, और बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं मिलता। और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और याद रखिए, सफलता का मंत्र है सीखते रहो, बदलते रहो और रुकना मत। और लेकिन हमें रुकना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि समय हो रहा है, घड़ी हमें कह रही है विदा लेने का।
0: बिल्कुल, क्योंकि अनुशासन भी सफलता की एक मूल मंत्र उसमें से है, कि अनुशासन का जीवन में बिल्कुल पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर अनुशासन रहता है तो ही आप समय पर हर चीज़ करते हैं, और वही आपके सफलता का कारण होता है। लेकिन इसी को अजमाते हुए हम भी अब घड़ी
1: विदा लेते हैं जी,
0: सब
1: और समेटते हैं ये कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन।
0: तो मुझे यानी रेनू को
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति, हमारा दोनों का प्यार भरा

0: नमस्कार। आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील

वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Meanwhile, at least 933 workers are believed to be trapped at around half a dozen hydropower projects. Rescue teams backed by India and other experts are searching around the hydropower tunnels, including Trishuli 3A. In Tibet, the death toll currently stands at 16, with 546 reported to be missing. Following the severe flooding in Nepal and heavy rainfall in catchment areas, water levels of the Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur barrage at Kosi have been opened. However, the water levels and discharge from both rivers have declined over the past 24 hours. Benchmark domestic equity indices were trading lower in the afternoon session today. The Sensex declined 271 points to 76,993, while the Nifty lost 110 points to 24,066 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Akashwani Delhi ka ye Indi Prasthi channel hai. Medium wave 366.3 meter, arthat 819 kilohertz. DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकेंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार प्रोग्राम है एक ही फिल्म से प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले सुनते हैं ये संदेश
2: दी हाँ? ये देख कैसे
3: हैप्पी बर्थडे भाई
2: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग
4: I know, ma. But खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
5: Saving करने की भी यही उम्र है.
6: I know, pa. Save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
4: I know, na.
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो financially smart.
1: आज के हमारे इस खास फिल्मी सफर में हम चलेंगे एक ऐसे ही जादुई शहर की गलियों में जहाँ हर रात किसी कहानी का इंतजार करती है और हर धड़कन किसी अपने की तलाश में है. जी हाँ, आज हम बात करेंगे साल 2007 की उस फिल्म की जिसने हिंदी सिनेमा में एक बिल्कुल अलग रंग और संसार रचा. एक ऐसी फिल्म जिसमें दो नए चेहरों को हिंदी सिनेमा से परिचित करवाया, वो थे रणवीर कपूर और सोनम कपूर. अब इन दोनों पर्दों को जो कलाकार थे इन दोनों को पर्दे पर पहली बार जो लेकर आए थे वो ऐसे फिल्मकार जिनकी फिल्मों में कहानी जितनी होती है उतनी खूबसूरत भरा हुआ संगीत और रंग भी होते हैं. शायद अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा और अगर अभी तक थोड़ी सी भी आशंका है तो इस गीत को सुनने के बाद हमेशा की तरह आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे. सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपने जवाब आपको भेजना है मेल पर और वो मेल का पता है ipradiodelhi@gmail.com. अब इन सब के बीच में अपना नाम बताना कैसे भूल सकती हूँ, तो आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे. आप सभी का अभिनंदन करती हूँ इस प्रोग्राम में.

2007 की दिवाली तो आपको याद ही होगी, है ना? एक तरफ थी शाहरुख खान की ओम शांति ओम और दूसरी तरफ थी भंसाली जी की नीले और हरे रंग में सजी ये जादुई दुनिया सांवरिया। ये फिल्म रूसी लेखक फ्योडोर दोस्तोवस्की की मशहूर छोटी कहानी व्हाइट नाइट पर आधारित है। 9 नवंबर 2007 को संजय लीला भंसाली की एक खूबसूरत सी फिल्म रिलीज हुई जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में नजर आए थे रणवीर कपूर, सोनम कपूर। इन दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। इसके साथ ही स्पेशल अपीयरेंस थी सलमान खान और रानी मुखर्जी। संगीत बहुत ही शानदार संगीत था, हर गाना इस फिल्म का सुपरहिट रहा और वो दिया था मोंटी शर्मा ने। बैकग्राउंड जो कलर थीम थी फिल्म की वो सबसे बड़ी इसकी खासियत थी। इसका सेट इतना खूबसूरत था जिसमें नीले हरे और काले रंगों की शेड्स एक सपने जैसा लुक महसूस कराते थे। फिल्म की कहानी भी उतनी ही शानदार थी। फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

इन युवा कलाकारों के साथ इस फिल्म में जोरा सहगल और कई अनुभवी कलाकार भी नजर आए। सावरिया की कहानी, जैसा कि हमने आपको बताया, व्हाइट नाइट एक रूसी लेखक की जो कहानी थी उससे प्रेरित थी, और इस कहानी की जड़ें भारतीय सिनेमा से बाहर की साहित्यिक दुनिया तक जाती हैं। लेकिन भंसाली जी ने उसे अपने खास सिनेमाई अंदाज में एक सपनों जैसे भारतीय संसार में ढाल दिया था। और इस फिल्म का सबसे खास पहलू था इसका संसार, एक ऐसा काल्पनिक शहर जिसकी गलियां, रोशनी, पुल, इमारतें और रात का नीला आसमान फिल्म को एक परी कथा जैसा रूप देता है। यही वो दुनिया है जहां एक दिन एक बेफिकर मस्त मौला नौजवान आता है, रणवीर, जो किरदार था इनका वो रणवीर राज था। वो गाता है, मुस्कुराता है और ज़िंदगी को अपनी धुन पर जीता है। लेकिन इसी शहर में उसकी मुलाकात होती है सकीना से, जिसका किरदार निभाया सोनम कपूर ने। सकीना के दिल में किसी और का इंतज़ार है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार है, इंतज़ार है, उम्मीद है और थोड़ा सा दर्द भी है। रणवीर राज अपनी पहली नज़र में सकीना की तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन सकीना का दिल पहले से ही किसी और के नाम है। वो हर रात अपने उस प्यार का इंतज़ार करती है और शायद वो प्यार उसका वापस आ जाए, शायद प्यार उसका वापस ना आए, इसी कश्मकश में वो रहती है। और रणवीर राज जानता है कि सकीना के दिल में उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके करीब रहता है। और इसके बाद क्या होता है पूरी बात हम नहीं बताएंगे, आपको फिल्म देखनी है। वैसे अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको आगे की कहानी भी पता होगी, और अगर नहीं देखी तो हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकाल कर इस फिल्म को भी अपने देखने वाली लिस्ट में शामिल कर लीजिए। नाम है सावरिया।

सांवरिया भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे हॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा सह निर्मित और रिलीज किया गया था। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की दो बेहद सीनियर अभिनेत्रियों जोहरा सहगल और बेगम पारा के जीवन की आखिरी फिल्म भी साइन हुई थी। फिल्म में एक सीन में रणवीर कपूर को कुर्सी के पीछे की तरफ गिरना था। इस परफेक्ट शॉट को पाने के लिए भंसाली जी ने रणवीर से करीब 70 से ज्यादा रीटेक करवाए थे और इस दौरान रणवीर जी की पीठ में भी गंभीर दर्द शुरू हो गया था, लेकिन भंसाली जी कहां मानने वाले थे। जब तक उन्हें अपना मनपसंद शॉट नहीं मिल जाता था वो इसी तरीके से रीटेक करते थे और जैसी तस्वीर दिखने वाली एक नीली हरी दुनिया फिल्म की जो थी वो सबसे बड़ी इस फिल्म की खासियत थी। और जानते हैं ये जो सिनेमेटोग्राफी और जो कलर जो पैलेट था ये ब्लू ग्रीन ब्लैक शेड्स इन सब से शूट किया गया था और भंसाली जी ने करजत के एनडी स्टूडियो में एक काल्पनिक और जादुई शहर का विशाल सेट तैयार करवाया था जिसमें झरने थे, नदियां थीं, पुल शामिल थे ताकि हर फ्रेम एक चलती फिरती पेंटिंग जैसा दिखे। तो वैसे भी कहते हैं कि जो नीला रंग होता है और हरा रंग जो होता है वो प्रेम के देवता कृष्ण और कामदेव का प्रतीक माना जाता है और यही सब दिखाने की कोशिश संजय लीला भंसाली जी ने भी अपनी फिल्म सांवरिया में की थी।

परी जैसी दिखने वाली सोनम कपूर का जो किरदार था इस फिल्म में, जानते हैं इस फिल्म में आने से पहले उनका वजन था 80 किलो। भंसाली जी के कहने पर उन्होंने कड़ी मेहनत करी और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले लगभग 35 किलो उन्होंने अपना वजन घटाया। भंसाली जी को अपने जो ये दोनों हीरे थे उनको उन्होंने छुपा कर रखा। सोनम और रणवीर इन दोनों को एक सख्त हिदायत दी थी, वो किसी भी सार्वजनिक इवेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि भंसाली जी चाहते थे कि दर्शक उन्हें सीधे सिनेमा घर में ही देखें। सलमान और ऋषि कपूर की मौजूदगी भी इस फिल्म में एक चार चांद लगाने का दोनों ने काम किया था। साथ ही रानी मुखर्जी का जो कैमियो रोल था उसके साथ साथ रणवीर कपूर जी के जो पिता थे और ऋषि कपूर जो थे उनकी भी जो मौजूदगी थी उसको भी शुरुआत में पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये गाना है जब से तेरे नैना मेरे नैनों से, इस गीत को गाया था शान ने। शान जब इस गीत को गा रहे थे तो उनको थोड़ी सी झिझक थी, थोड़ी सी उनको एक नर्वसनेस थी, घबराहट थी, क्योंकि वो ये गाना नहीं गाना चाह रहे थे। ये गाना बहुत ही शांत और सूफी मिजाज का था, लेकिन भंसाली जी के भरोसे ने इस गाने को अमर बना दिया। उन्होंने भंसाली जी ने उनको हौसला दिया और उन्होंने कहा कि ये गाना सिर्फ तुम ही गाओगे। शान ने भी अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो इस गाने में दी और उनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत और आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं, उनको भी वक्त है बस कुछ ही देर में शामिल करने का।

नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग टेलर छपलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, मुकेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत भापसा जी प्रमिला जी के साथ वीरंगाव जंक्शन से जुड़े हुए हैं ढेर सारी जानकारी के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हीरा मणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से हमें सुन रहे हैं, मुकेश कासलेकर तहसील बरून जिला अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। अगला संदेश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल जी का आया हुआ है। ये संदेश हमारे पास जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम दिशानी और निमित का है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी जी हमें सुन रहे हैं और देवशंकर तामुरी अजय देव तुषार जी डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। वलीउल्ला अंसारी खदीजा बेगम हमारे साथ मुस्तफाबाद दिल्ली से जुड़े हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हैं, ऊपर कोच मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शनिवास सरफराज फरदीन सुहाना और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। और ये संदेश डीवी राणा जी का नेहरू विहार दिल्ली से आया। बचिंगखेड़ा पंजाब से मिची टॉमस पिंकी लवली जी हमें सुन रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गॉड जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। भवनपुर बसना से चंपा देवानगन राधेश्याम जगदीश जी हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी ज्योति मक्कर जी के साथ जलालाबाद जालंधर पंजाब से हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा ईशान हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल यशस्वी जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी का एक और संदेश है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन उषा मोहन चिलू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। शिवा गोप प्रेम गोप कपिल जी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ हैं। नलवेश नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहान का निर्मला विशाल जी हमारे साथ हैं। मुरादाबाद गांव धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरान जी हमें सुन रहे हैं। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित जी हमारे साथ हैं। तो आप सभी का हम ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफ़र में, हमारे हम सफ़र बनने के लिए। फिलहाल ये गीत आप सुन रहे हैं इसी फिल्म का।

दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, कुछ कहानियाँ अपनी यादों में पूरी होती हैं। सावरिया की कहानी शायद इसी एहसास की कहानी है। रणवीर कपूर की पहली फिल्म, सोनम कपूर की पहली फिल्म, संजय लीला भंसाली का एक अलग सिनेमाई प्रयोग और मोंटी शर्मा के संगीत से सजी एक स्वप्निल दुनिया। तो फिर आपसे मिलूंगी एक नई फिल्म के साथ, एक नई कहानी के साथ और कुछ अनसुने फिल्मी किस्सों के साथ। फिलहाल जाते जाते यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपकी लिस्ट में ये फिल्म शामिल नहीं है तो वक्त निकालकर जरूर देखिएगा। फिलहाल अपनी अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए 3 बजे मैचनी मेलोडीज में एक बार फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, उससे पहले 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर होंगी, प्रीति त्यागी। नमस्कार।

0: फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: उन्होंने कहा कि फैशन और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की विश्वव्यापी मौजूदगी वधाने लई अथाह संभावनावां ने। नौजवानों 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान पाने का सद्दा दिंदिया राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों सिर्फ नौकरी लभण वाले नहीं सगों रोजगार पैदा करने वाले बनन ते दूजे लई रोजगार ते मौके पैदा करने की कोशिश करनी चाहीदी है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 दहाकों दौरान NIFT के विद्यार्थियों ते पेशेवरों ने राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते महत्वपूर्ण प्राप्तियां हासिल कीतियां ने। एक खबर तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, ते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। नेपाल विच भयानक खड़ा कारण मरण वालियां दी गिणती 903 हो गई है। 4247 तो वध लोग हालां भी लापता ने। सारे 8 प्रभावित जिलों में राहत ते बचाव कार्य तेजी नाल चल रहे ने। नेपाल विच 5 तो वध पण बिजली प्रोजेक्टां नाल जुड़े स्थानां ते 900 तो वध मजदूरां दे फसे होण दा खदशा है। भारत ते होर देशां दे माहरां दी सहायता नाल बचाव टीमां त्रिशूली 3A समेत कई पण बिजली प्रोजेक्टां नाल जुड़ियां सुरंगां दी भाल कर रहियां ने। उधर तिब्बत विच मरण वालियां दी गिणती 16 हो गई है, जदों कि 546 लोग लापता ने। भारतीय बचाव टीमां चिलीमे ते लांगटांग पण बिजली प्लांटां ते नेपाली फौज नाल काम कर रहियां ने। नेपाली फौज दे बुलारे ने कहा कि बहुत ज्यादा मलबे कारण सुरंगा तक पहुंच मुश्किल हो गई है। नेपाल दे प्रधानमंत्री बिरेंद्र शाह ने हड़ां नूं एक विनाशकारी कुदरती आफत दस्सिया। लगभग 1000 सुरक्षा मुलाजम राहत ते बचाव कार्यां विच लगे हुए ने। रेड क्रॉस दा अनुमान है कि 90,000 तों वध लोग प्रभावित हुए ने। नेपाल विच भयानक खड़ा अते तेज बारिश कारण बिहार विच गंडक अते कोसी नदियां दे पानी दा पद्धर चढ़ गया है। नदी दे बहाव नूं कंट्रोल करन लई कोसी विच स्थित वाल्मीकि नगर बैराज दे सारे 36 गेट अते बीरपुर बैराज दे 56 विचों 25 गेट खोल दिते गए ने। सुप्रीम कोर्ट ने अज उस जनहित पटीशन ते सुनवाई करन तों इनकार कर दिता जिस विच केंद्र सरकार अते होर संबंधित हिस्सेदारां नूं इह निर्देश देण दी बेनती कीती गई सी कि देश भर दे पेट्रोल पंपां ते पेट्रोल विच मौजूद एथनोल दी सही मात्रा लाजमी तौर ते दसी जाए। वकील नरेंद्र गोस्वामी वल्लों दायर पटीशन विच एथनोल वाले ईंधन दे वाहनां विच वरतों दी अनुकूलता बारे वधेरे पारदर्शिता लई निर्देशां दी मांग कीती गई सी। जस्टिस MM सुंदरेश अते प्रसन्ना भी वराले दे बेंच ने पटीशन दी सुनवाई करन तों इनकार कर दिता। हालांकि बेंच ने पटीशनर नूं अपनी शिकायत नाल संबंधित हाई कोर्ट विच जाण दी इजाजत दे दित्ती है। पटीशन विच मांग कीती गई सी कि हरेक पेट्रोल पंप ते हर नोजल पेट्रोल विच एथानोल दी फीसद नूं स्पष्ट तौर ते दर्शाया जाए। पेट्रोल की रसीद ते भी एथनोल दा फीसद लिखा होना चाहिए। पटीशन विच ए भी मांग कीती गई सी कि सरकार E20 पेट्रोल लई ढुकवें वाहनां दी एक अधिकारित सूची बनाए जिस विच दस्या जाए कि केड़ा वाहन E20 पेट्रोल लई अनुकूल है ते केड़ा नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अज अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M नूं भारत विच खोज ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈ G20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3M ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ US ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆਨੋ ਨੋਵੋਨ ਨੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ B ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤੀਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ 94 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਸਤਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NIFT के तलबा पर जोर दिया है कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत को बरकरार रखते हुए आलमी नुक्ते नज़र इख्तियार करें। हुकूमत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के सभी 6 सतून को नोटिफाई किया है। भारतीय बहरिया ने INS निपुण को बहरिया में शामिल किया है। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब के बाद राहत और बचाव कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है और 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और फुटबॉल में आज ताशकंद में भारत AFC Under-20 एशिया कप क्वालिफाई मुहिम का आगाज मुल्क शाम के खिलाफ मुकाबले से करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान के अपने 2 रोजा दौरे के पहले दिन बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की। इस मौके पर योगा और मानस एकेडमी समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत के साथ काम करने वाले 4 वफद मौजूद थे। इसके बाद वजीर आजम मोदी ने बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत नजर किए। वजीर आजम मोदी आज शंघाई तआवुन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी कल शंघाई तआवुन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि टेक्सटाइल और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है बल्कि ये लाखों अफराद के गुजर बसर का जरिया भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFTA के जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत और एक अकदार से मरबूत रहने के साथ साथ एक आलमी नुक्ते नज़र इख्तियार करें। फैशन सनत में खवातीन के उभरते रोल पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तकरीब में मौजूद तकरीबन 4000 तलबा में से 85% खवातीन हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभव बनाए। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: विकसित भारत 2047 के नज़रिए में तआवुन की खातिर नौजवानों पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा महज नौकरी तलाश करने वाले न बने रहें बल्कि वो नौकरी फराहम करने वाले और दीगर के लिए रोजगार के मौके कायम करने वाले बने। सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़श्ता 4 दहाई में NIFTA के तलबा और पेशावर अफराद ने कौमी और बैन-अल-अक़वामी सतह पर अहम हसूलियाबी हासिल की है और मुल्क का नाम रोशन किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉ प्रणब मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया एक ऐसे सरकर्दा मुंतजिम और स्कॉलर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपने पुख्ता अज़्म और दहाइयों पर मबनी अपनी अवामी जिंदगी में आइनी अकदार को तरजीह दी। जनाब शाह ने मजीद कहा कि उनकी मीरास रहनुमाओं को तरगीब देती रहेगी। हुकूमत ने आज 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के साथ सेमिकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाई किया है ताकि मुल्क

0: में चिप मैन्युफैक्चरिंग के इको निज़ाम को फ़रोग दिया जा सके। इसके साथ ही आइंदा बरसों में भारत आलमी सेमीकंडक्टर सनत के बाजार का तकरीबन 10% हो सकता है और आलमी सेमीकंडक्टर के मामले में भारत एक ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया के सभी 6 सुतूनों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात कही। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में पुख्ता तौर पर शामिल करने पर है। उन्होंने कहा कि आलमी सेमीकंडक्टर सनत के मुतालिका फरीकों के दरमियान ये एतमाद है कि भारत आइंदा दहाइयों में अहम सरमायाकारी के लिए एक सही और मुनासिब मकाम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय बहरिया ने आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार जुमरे के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण को बहरी बेड़े में शामिल किया। इससे मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए बहरिया के सरबरा एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि हिकमत अमली की तब्दीलियों के इस दौर में निपुण जेरे आप खसूसी सलाहियतों में एक ज़बरदस्त इजाफा होगा जो गहरे पानी में कसीर रुखी कार्रवाइयों के लिए दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि निपुण से गोताखोरी और जेरे आप बचाव कार्रवाई के तौर पर कार्रवाई की मगरबी बहरी कमान की सलाहियतों में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम ने निपुण मुल्क में ही डिज़ाइन और तैयार किया है। नेपाल में गुज़श्ता हफ्ते तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है जबकि 4,247 अफराद से ज़्यादा का अब भी अता पता नहीं है। नेपाल की कुदरती आफात के खतरे को कम करने और उसके बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी के मुताबिक इतवार को 2,502 की तादाद से अब यह तादाद बढ़ गई है। नेपाल के सभी 8 अजला से लाशें बरामद कर ली गई हैं और बचाव कारकुन लापता और फंसे हुए लोगों की तलाश की खातिर कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान तकरीबन एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्टों में कम अज कम 933 वर्करों के फंसे होने का अंदेशा है। भारत की बचाव टीमें और दीगर माहिरीन पनबिजली प्रोजेक्टों की मलबे से बंद हुई सुरंगों के आसपास तलाशी की कार्रवाई कर रहे हैं। महकमे मौसमियात IMD आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के मशरकी हिस्सों में मौसमियाती तब्दीली का बड़ा असर पड़ रहा है। कुछ इलाकों में डैम के गेट्स को खोलना पड़ा जबकि सैलाब की सूरत हाल के सबब कई इलाके मुश्किल हालात से दो चार हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मशरकी मध्य प्रदेश में तेज बारिश के सबब दरियाओं और डैम में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है जिसके सबब कई इलाके मुश्किल से दो चार हैं। शाहडोल में बाणसागर डैम में पानी की सतह बढ़ने की वजह से उसके गेट्स कुछ देर के लिए खोलने पड़े। चित्रकूट में मंदाकिनी दरिया में पानी की सतह तकरीबन 30 फुट बढ़ गई है। गोर्गी डैम टूटने के सबब कई इलाकों में पानी भर गया जबकि पानी के तेज बहाव से रामघाट के बड़े पुल को नुकसान पहुंचा। वजीर आला मोहन यादव ने कल चित्रकूट का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और राहत कैंप में लोगों का हाल जाना। महकमा मौसमियात ने आज रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: फुटबॉल में भारत के मर्दों की 20 साल तक की उम्र की कौमी टीम आज ताशकंद के दोस्त लेक स्टेडियम में मुल्क शाम के खिलाफ चीन के AFC अंडर 20 एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स मुहिम का आगाज करेगी। भारत को ग्रुप बी में मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। भारतीय टीम का मकसद 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी करना है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NIFT के तलबा पर जोर दिया है कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
2: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
2: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
3: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष

0: दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कला एक ही कलाकार हमारे इस कार्यक्रम का नाम है और आज हम बॉलीवुड से ही एक ऐसे कलाकार को चुनकर लाए हैं। वैसे बॉलीवुड के बारे में हम यही कहेंगे कि बॉलीवुड में कुछ चेहरे जो होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कुछ बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो कि खूबसूरत भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं और साथ ही साथ अपनी शर्तों पर, पूरी इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं जो कि फौजी परिवार से आई, मिस इंडिया का ताज उन्होंने अपने सर पर सजाया और फिर बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी सपोर्ट के बॉलीवुड के हर बने बनाए दस्तूर को तोड़ती हुई वो ऊंचाई पर जा बैठी और अपने काम को लेकर इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड कि चाहे वो 8 मंथ प्रेगनेंसी में भी पुलिस की वर्दी को पहनकर एक्शन सीन करने का उनका जुनून हो, अपनी एक्टिंग को लेकर कुछ भी आप कहें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की अल्टीमेट बॉस बेब नेहा धूपिया को। तो थाम लीजिए अपने दिल की धड़कनें क्योंकि आज के सफ़र में हम बात करने वाले हैं नेहा धूपिया के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से प्यारे से गीत के साथ।
1: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

नेहा धूपिया जिनका जन्म हुआ कोच्चि में एक सिख परिवार में, उनके पिता भारतीय नौसेना में एक कमांडर थे और फौज से वो जुड़ी हुई थी। उनका परिवार इधर उधर हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था, जिस वजह से नेहा की जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो अलग अलग शहरों में हुई और आखिरकार उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनका जो रुझान है वो शुरुआत से एक्टिंग की तरफ था और वो ग्लैमर वर्ल्ड में जुड़ना चाहती थी, वहाँ जाना चाहती थी और इसकी शुरुआत हुई दिल्ली के मशहूर प्ले यूटोपिया से। उसके बाद उन्होंने इंडी पॉप बैंड यूफोरिया के आइकॉनिक गाना आपने सुना होगा मुसाफिर के म्यूज़िक वीडियो से उन्होंने अपनी पहली ऑन स्क्रीन छाप छोड़ी और यहाँ से आ गई वो मॉडलिंग की दुनिया में। यहाँ पर जब वो मॉडलिंग में आई तो आगे बढ़ती गई और 2002 में नेहा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट में हिस्सा लिया और अपनी खूबसूरती और अपनी हाजिर जवाबी की वजह से मिस इंडिया यूनिवर्स 2002 का ताज अपने नाम किया। और उसी साल उन्होंने प्यूर्टोरिका में मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता थी उसमें भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से वो वहाँ पर गई और टॉप 10 में उन्होंने अपनी जगह बनाई। मतलब आप कह सकते हैं कि शुरुआत जो है उनकी हो चुकी थी और मिस इंडिया बनने के बाद जब आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हाजिर जवाब भी हैं, तो आपके लिए बहुत सारी जो लाइनें हैं वहाँ आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन नेहा का सपना शुरू से ही था कि वो इस इंडस्ट्री में जाए, फैशन इंडस्ट्री में जाए या फिर एक्टिंग की दुनिया में जाए और यही वजह थी कि मिस इंडिया बनने के बाद उनके लिए दरवाजे खुल गए बॉलीवुड के। उनके आगे के सफ़र के बारे में हम बातें करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत संगीत फिल्म 10 कहानियाँ से। नेहा धूपिया, जिनको 2002 में वो मिस इंडिया बनी और उसके बाद

हॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए। साल 2003 में उनकी फिल्म आई, ये एक थ्रिलर फिल्म थी, कयामत सिटी अंडर थ्रेट। इस फिल्म में नेहा ने अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अरबाज खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया, और ये वो फिल्म थी जिस फिल्म में उन्होंने पहली बार काम किया। लेकिन वो फिल्म में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इतने बड़े बड़े सितारों के होते हुए भी उनकी तरफ हर किसी का ध्यान गया। यानी कि उनके अंदर वो दम था, वो मादा था कि वो अपने दम पर इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकती हैं। तो लीजिए सुनते हैं कयामत फिल्म से अभिजीत की आवाज़ में ये गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म कयामत से अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। फिल्म 2003 में आई कयामत, और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को, उनकी जो उनका जो टैलेंट था उसको बहुत सराहना मिली। लेकिन असली पहचान और चर्चा बन में आई उनकी फिल्म 2004 की आई फिल्म जूली। इस फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड किरदार निभाया और उस किरदार से पूरे जो पूरी फिल्मी दुनिया थी, जो पूरा बॉलीवुड था, वहाँ तहलका मचा। और उस दौर में ऐसा बोल्ड रोल उन्होंने चुना, लेकिन नेहा के इस कदम ने

रातों रात सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया, और उसी दौरान बॉलीवुड में उन्होंने बहुत से जो अपने स्टेटमेंट थे वो भी दिए, लेकिन हाँ इसके बाद वो ज़रूर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। हर किसी की ज़बान पर उनका नाम था, हर जगह चर्चा का जो एक विषय थी वो ये बन गई थी। लेकिन उनकी जो एक्टिंग थी वो किसी चीज़ से कम नहीं थी, और फिल्म जूली के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे फिल्म शीशा हो, क्या कूल हैं हम, गरम मसाला और आगे चलकर मिथ्या, और यहाँ तक कि तुम्हारी सुलु जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल ही नहीं करती हैं बल्कि सीरियस कॉमेडी, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर तरह का किरदार वो एकदम बहुत ही आसानी के साथ निभा लेती हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म जूली से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं नेहा धूपिया के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में डेब्यू किया। मिस इंडिया से लेकर के हिंदी सिनेमा का जो उनका एक बेबाक और बोल्ड अदाकारा का जो किरदार था वो चल रहा था, जूली फिल्म उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने की थ्रिलर और ड्रामा फिल्म क्या कूल है हम, जिसमें उन्होंने कॉमेडी करके लोगों को बताया कि वो सिर्फ बोल्ड किरदार ही नहीं निभा सकती हैं बल्कि वो कॉमेडी भी कर सकती हैं। इसके अलावा सिंग इज किंग फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ बॉन्डिंग दिखाई और बहुत ही मज़ेदार ये फिल्म रही। और एक वक्त ऐसा आया और जब वो लीक से हटकर किरदार चुनने लगी और इसी दौरान उन्होंने विद्या बालन

के साथ की फिल्म तुम्हारी सुलू। इसमें नेहा ने एक रेडियो स्टेशन के हेड मारिया का किरदार निभाया। उनका ये रोल इतना सधा हुआ और एकदम मैच्योर किरदार था कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म तुम्हारी सुलू से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम और कृष्णा देवांगन के साथ। अगला संदेश हमारे पास आया, अजित भावसर जी ने संदेश भेजा हम तक, और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने नेहा जी के बारे में हम तक पहुँचाई है। लिखते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले नेहा ने साल 2000 में एक जापानी फिल्म नाटू ओडू निंजा देनसेतु की में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का भी किरदार निभाया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने अजीत जी, बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। प्रमिला भावसर जी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और अगला संदेश हम तक पहुंचा है सहारनपुर कुमार हेड़ा से। सैयद मशरू चाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये अगला संदेश भेजा है। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मन्नू जी का, और अगला संदेश वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर और ईशान के साथ। शिवा गो प्रेम कपिल शिवांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिला पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से। अगला संदेश प्रकाश प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल यशस्वी जी का है छत्तीसगढ़ पलारी से। अनिल मोहन उषा टिल्लू नायक मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। गांव फरा से जिला हिसार से जुड़े राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, अनिल मोहन जी पीटीआई संसद मार्ग से हमारे साथ जुड़े हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशव रिदान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला संदेश अमर रमेश कुमार खत्री जी का है, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ हैं जफर सदीक शेख, शंकर गुल शर्मा बेरानी वाले, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुँचाया है कराची से। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं चूड़ी लाइन मुंगेली से। इनके साथ हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, और अगला जो संदेश है उसको पहुंचाने वाले हैं फागुराम यादव। इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया संबल

कांकेर से। इनके साथ हैं ज्योति और ओजस्वी यादव। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिन संदेशों के ज़रिए सभी जो श्रोता हैं वो हम तक जुड़े। और दोस्तों आज यही कहूँगी कि इस कार्यक्रम में आज हमने बात की एक अफसर की बेटी जो कि अपने बुलंद इरादों के साथ मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड का सफ़र उसने बहुत ही बेबाकी के साथ किया और अपनी जगह बनाई इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी सहारे बिना किसी गॉडफादर के। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप हर मुश्किल हर किरदार को आसानी से पा सकते हैं और वो भी अपनी शर्तों पर। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में ये सफ़र यहीं तक। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़े जाऊंगी आप सभी के लिए खूबसूरत सा प्यारा सा गीत उन्हीं की फिल्म से और यही कहूंगी खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास भी सब लोगों में खुशियां बांटिए। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप जानते ही हैं कि ये समय होता है प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का, वो प्रोग्राम जिसके अंतर्गत हम लेकर आते हैं गोल्डन इरा के वो खूबसूरत से सॉन्ग्स जिनको सुनने का दिल बार बार करता है। तो क्यों ना आज भी हम अपने दिल की सुने और चलें उसी दौर में जब वो गीत सीधे दिल में बसते थे, और आज भी अगर हम बात करते हैं तो वो दिल के कोने में खूबसूरती की तरह सजे हुए हैं। आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ और फिर होंगी ढेर सारी बातें।

हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम स्वर्णिम दौर। उस समय फिल्में आज की तरह आधुनिक तकनीकी, डिजिटल कैमरा और कंप्यूटर ग्राफिक्स के सहारे नहीं बनती थी। सीमित साधनों के बावजूद कहानी, अभिनय और संगीत, भावनाओं पर इतना ध्यान दिया जाता था कि फिल्में आज भी याद की जाती हैं। फिल्म की जो कहानी होती थी वो पटकथा, उसका बहुत महत्व होता था। लेखक, संवाद लेखक, निर्देशक, ये सब मिलकर कहानी, दृश्य, संवाद तैयार करते थे। सामाजिक समस्याएं, रिश्ते, गरीबी, अमीरी, प्रेम, त्याग और मानवीय संवेदनाएं फिल्मों के मुख्य विषय होते थे। देखा ना कितना समय बदल गया। उस समय को अगर हम देखें तो एक सादगी थी, लेकिन सादगी में भी इतनी ज़्यादा कला उभर कर आती थी कि शायद आज की जो बड़ी बड़ी टेक्निक है वो भी उस खूबसूरत से पल को वापस नहीं ला सकती। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़ में, जैसे हमने लिया है फिल्म टैक्सी ड्राइवर से।

उस दौर में आज के डिजिटल कैमरों की जगह फिल्म कैमरों में रील लगाकर शूटिंग की जाती थी। फिल्म रोस्टॉक महंगा होता था, इसीलिए हर दृश्य को कई कई बार शूट करना आसान नहीं था। कलाकारों और तकनीकी टीम को पहले से ही अच्छी तैयारी करनी पड़ती थी और उसके बाद ही सीन शूट किए जाते थे। घर, हवेली, रेलवे स्टेशन, बाजार या अदालत जैसे जो स्थान होते थे उनको स्टूडियो में ही सेट बनाकर तैयार किया जाता था। आउटडोर शूटिंग भी होती थी लेकिन आज की तुलना में काफ़ी सीमित होती थी, क्योंकि आउटडोर जो शूटिंग है वो भी कॉस्टली पड़ती थी।

हमारे साथ तेलंगाना निजामाबाद से शिकल्ला बख्श बेगम राबिया शेख शेख रही मुन्ना जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश तंगोरी मोहाली पंजाब से आया है और गुरप्रीत तंगोरी, जसवीर कौर, महिकप्रीत और सहिजप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर कोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्धबासी निगत, परवीन शेनवास, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। बीरंगाव गुजरात से अजीत भापसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि मैचिनी मेलोडीज़ में फिल्म टैक्सी ड्राइवर का सॉन्ग और दिल से मिला के दिल शीला रमानी जी पर फिल्म आया है और देवानंद जी की ज़्यादातर फिल्मों में ये क्लब डांसर रहती थी। ओल्ड इज़ गोल्ड, बिल्कुल ओल्ड इज़ गोल्ड ही है। जितने भी गीत हम सुनते हैं एक

अलग ही कशिश वही महसूस होती है जब ये फिल्में रिलीज हुई थी। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी हमारे जो दोस्त हैं, जो अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, सफ़र में हमारे हम सफ़र बनना चाहते हैं, तो मेल के ज़रिए हम तक अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी है ip radio delhi@gmail.com। अगला जो गीत हमने

0: जी हाँ, इसी तरीके के गीत जो आज भी कभी कोई फंक्शन होता है अगर जन्मदिन का, तो ये गीत तो अक्सर बजी जाता है। और उस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि आउटडोर शूटिंग की जगह इंडोर शूटिंग का ज़्यादा महत्व था, और जितने भी जो भी सीन फिल्माए जाते थे, चाहे वो कोई हवेली हो, चाहे घर हो, रेलवे स्टेशन हो, मार्केट हो, अदालत हो, इन सबको स्टूडियो में ही इनके सेट बनाते थे। उस समय गीतों की रिकॉर्डिंग में गायक, संगीतकार और वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार अक्सर एक साथ रिकॉर्डिंग करते थे। गलती होने पर कई बार पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ती थी। इतना अंतर आ गया है अगर आप देखें। आज रेडीमेड संगीत होता है, बस गायक को अपनी आवाज़ उसमें फिट करनी पड़ती है, लेकिन उस वक्त लाइव होता था, और अगर किसी के साथ भी थोड़ी सी मिस्टेक होती थी तो फिर से पूरी नए सिरे से रिकॉर्डिंग की जाती थी। और यही वजह थी कि उस दौर के संगीत में ऑर्केस्ट्रा, लाइव वाद्य यंत्र और गायकी की बारीकियों का खास महत्व दिखाई देता था।
1: अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं, और गाने में यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: सोना चाहते हो?
1: नहीं!
0: तुम लोग उदास रहना चाहते हो?
1: नहीं!

0: मनाडी को आप सुन रहे थे फिल्म भूत बंगला में। उस वक्त फिल्म जो होती थी वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती थी, बल्कि समाज और इंसानी जिंदगी का आईना भी होती थी। कहानी जो होती थी फिल्म की, वो उसका जो मेन हिस्सा था वो होता था संगीत। गीत सिर्फ बीच में डालने के लिए नहीं होते थे, वे कहानी को आगे बढ़ाते थे, किरदारों की भावनाएं बताते थे और फिल्म की पहचान बन जाते थे। शंकर जयकिशन, SD बर्मन, नौशाद, OP नैयर और मदन मोहन जैसे संगीतकारों ने उस दौर को अमर बना दिया। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला जैसे कलाकारों की जो अदाकारी थी, उनके जो संवाद बोलने का तरीका था, चेहरे के जो हाव भाव थे और आवाज़, इन सबका भी बहुत अलग ही महत्व था।
1: रह

छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी अन्नपूर्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलते चलते हम आपको बताते हैं कि उस वक्त तकनीक कम थी, कल्पना ज़्यादा थी, विशेष प्रभाव आज जितने आसान नहीं थे, इसीलिए निर्देशक, कैमरा एंगल, रोशनी, सेट, धुआं, प्रॉप्स, एडिटिंग और कलाकारों की अदाकारी से ही इफेक्ट पैदा करते थे। तो खैर वो युग वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो यादें हैं और वो चीज़ें जो हमने अभी भी सहेज कर रखी हैं हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो रहा है कि आपसे अनुमति लूँ, फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए छोड़े जा रही हूँ, जिसे मैंने लिया है फिल्म अलबेला से, आवाज़ लता दी की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 3:30। आइए सुनते हैं कार्यक्रम

0: काउंसलर नहीं हूँ
1: जी,
0: लेकिन मैंने बच्चों के दरमियान 25-30 साल गुजारे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम शायरी हो गई बात, ये लेकिन
1: जी,
0: मैं
1: ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है
0: जी जी
1: वो, मेरे लिए आपकी शख्सियत, आपकी शायरी और आपके कारनामे और जहाँ भी आपने जो जिद्दोजहद की है वो तमाम चीज़ें इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था तफसील से, और बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि शायरी ज़िंदगी से निकलती है और आपने जो काम किया है वो भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला,
0: बेशक बेशक,
1: और ऐसी ज़िंदगी जो काबिल क़द्र हो आपकी नज़रों में भी, दुनिया की नज़रों में भी, ये हम
0: बेशक,
1: उस ज़िंदगी की जानिब गामजन होते हैं इस तरह के अमल से। तो आपके शेरी मजमूए बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आपने पहले ही कह दिया, एक मजमूआ है आपका,
0: एक किताब है, वो भी बहुत कमज़ोर सी है, बहुत ख़राब सी है।
1: आपकी इंकसारी का जवाब
0: नहीं,
1: नहीं, मैं
0: नहीं,
1: मुतरिफ़ हूँ पहले से।
0: नहीं नहीं,
1: बंजारा के नाम से ये किताब
0: जी
1: आई थी,
0: जी
1: और
0: जी जी जी
1: ये कब मंजरे आम पर आई?
0: ये सन 2008 की बात है, वो जिद्दा के मुशारे में उनका इसरार था मुंतजमीन का और कौंसलेट का कि आपकी कोई किताब होनी चाहिए, तो बहुत उजलत में मैंने, और वो यूं भी हुआ कि बस उसके मेरे सफ़र के एक महीने पहले वालदा गुजर गई थी, बस वो ये था कि एक पुलंदा कोई हो किताब नुमा और मैं ले आके उनको दिखा दूं कि भाई ये किताब आई है। अब वो शर्त वो क्यों मांग रहे थे, रख रहे थे, मुझे नहीं मालूम।
1: जी
0: अच्छा, मेरा असल मकसद ये था कि मैं अबू जी का जो एक बड़ा कारनामा है चिराग हेरा के उनवान से, मैंने 2012 में उसका सेकंड एडिशन शाया किया, बहुत खूबसूरत, और कुल्लियात आप के
1: जी जी
0: सामने है।
1: बिल्कुल, मैं
0: मेरा बड़ा
1: बहुत
0: अरमान
1: उम्दा
0: था
1: छपी भी है,
0: कि मैं
1: शायरी तो अच्छी है
0: अबू
1: ही।
0: जी का कुल्लियात जो है वो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, तो अबू जी का कुलियात जो है वो मेरा दहरीना ख्वाब था, लोग कहते हैं ऐसा कि मैं उसमें कामयाब रहा हूँ। तो
1: सही
0: मेरी
1: कहते हैं आप,
0: ज़िंदगी जो है वो, मेरी शेरी ज़िंदगी बहुत कम है, दूसरी फैकल्टीज़ में, दूसरी साइड्स में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ कर जाऊँ। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ, वो जो हमारा सेंटर है पूरे बम्बई में, उसका बजट लाखों में है, उसको मैं क्या कहूँ। मैं एवरी सैटरडे एसएससी के, यहाँ बोर्ड कहते हैं शायद, 10वीं बोर्ड, हमारे यहाँ एसएससी कहते हैं,
1: जी,
0: तो मैं एसएससी के बच्चों से मैं एवरी सैटरडे शाम को बात करता था, और अब जो बच्चे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि सर हम लोग हर शनिचर को आपका इंतज़ार करते थे। तो मैंने मतलब उनकी पॉलिशिंग करने की कोशिश की उनकी शख्सियत को, कि वो आगे चले तो दुनिया सर करें, अपना करियर बनाएं, और बाद में मैं उनसे ये कहता था कि आपकी दुनिया उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार ना हो जाए। तो अब क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं कह सकता।
1: नहीं, नहीं, आपने एक उम्दा रहनुमा की हैसियत से, उनके गाइड की हैसियत से आपने
0: जी जी जी
1: जो कुछ उन्हें दिया वो उसे याद रखते हैं, उसकी कदर
0: बेशक
1: करते
0: याद
1: हैं,
0: बहुत
1: ये
0: याद।
1: बड़ी बात है। और अभी हम जिक्र कर रहे थे कुल्लियात के हवाले से
0: जी
1: फजल
0: जी
1: जाफरी
0: जी
1: साहब
0: जी
1: के,
0: जी
1: और उनकी शायरी के हवाले से जो आपका पैशन है, जो आपके जज्बात हैं, उनके हवाले से बात कर रहे थे। वो उनको ये इम्तियाज़ हासिल है कि उनके अशार नाकिदों ने कोट किए, अदबी रसालों में कोट किए जाते थे, मुख्तलिफ हवालों से कोट किए जाते थे, और अलग अलग गुलकारों ने उनकी आवाज़, उनकी गज़लों को आवाज़ भी दी है, उन्हें गाया भी है। तो उनकी मकबूलियत का दायरा सिर्फ खवास तक महदूद नहीं था, लेकिन आपके लिए उनकी शायराना हैसियत को किन अशार ने पहचान दी? अगर आपको कुछ उनके पसंदीदा अशार जो आपके पसंदीदा,
0: जैसे
1: हवाला दे सकते?
0: उनका एक शेर है कि समुंदरों में पहुंचकर फरेब मत देना, अगर कहो तो किनारे पे डूब जाऊं मैं,
1: वाह,
0: और दुनिया के साथ हाशिया राइयों में था, मैं घर जला के खुद भी तमाशाइयों में था,
1: बहुत खूब,
0: अंधे कुएं में डाल के मुझको चला गया वो बेवफा लहू जो मेरे भाइयों में था। और तुम्हारे शहर का मौसम तो बहरहाल वो
1: मशहूर है,
0: बहुत मशहूर है। मैं कैसर साहब के ताल्लुक से एक बात शायद इस मतलब के ज़रिए से कुछ लोगों तक पहुँचे और कोई काम हो, नुमान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कैसर साहब की जो नज़में हैं, गज़लें तो नो कोई शुबा नहीं है उसमें कि गज़लें तो, अब वो मतलब इरफान जाफरी कैसल जाफरी के बारे में कुछ कहे तो वो अच्छा नहीं लगता।
1: यकीन मैं इसकी तस्दीक करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ा है, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करूँ।
0: तो उनकी जो नज़में हैं नौमान साहब, उन नज़मों पर कभी कोई बात नहीं हुई है। मैं एक बहुत ज़ाती नज़म है रंगे हिना में, जो उनका पहला मजमूआ था
1: जी,
0: और वो औलाद के नाम से है। तो हालांकि वो बड़ी पर्सनल और ज़ाती नज़में हैं, तो उनके यहाँ नज़मों में जो एक दर्द है, जैसे खंडर के उनवान से जो उनकी नज़में हैं, वो पार्टीशन और तकसीम हिंद और उसका जो सानहा है, और उसमें वो जो नज़म है वो हमारे गांव के पूरे पस मंज़र में, जाहिर सी बात है कि उन्होंने किसी को चाहा तो ज़रूर होगा,
1: यकीनन, और वो किसी को, हाँ, कोई ना कोई खुदा ने उसके लिए उतारा है।
0: बिल्कुल। तो वो जो भी रहा, मैंने उनसे कई मरतबा कुरेदने की कोशिश की कि नाम बता दीजिए
1: जी,
0: तो बोले यार अब सब अपने अजीजों में ऐसे हैं, अब क्या नाम बताऊं तुम्हें। तो वो खंडर आप पढ़िएगा उसमें।
1: जी जी, मैं यकीनन मैं दोबारा पढ़ूंगा।
0: हाँ बिल्कुल, आप खंडर पढ़िए, औलाद पढ़िए
1: जी,
0: बहुत शानदार नज़में हैं। चूँकि वो याद नहीं रहती पूरी नज़में, लेकिन
1: नहीं कोई बात नहीं, हम इसे पढ़ लेंगे और हमारे सुनने वाले भी यकीनन जाफरी साहब को जानते होंगे और उन्हें पढ़ना चाहते होंगे, तो आपने नज़मों का रेफरेंस दिया तो उनके लिए ये आसानी हो गई कि वो ये नज़में तलाश कर सकें और पढ़ सकें। शायरी करने के साथ साथ आपको कई महफिलों की बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी मिलती रहती हैं
0: जी,
1: और ख़बर ये है कि उन जिम्मेदारियों में आप काबिले रश्क हद तक हसीनो जमील होते हैं और ज़हीन होते हैं, और मैं बहुत सारे आदाब व अलकाब यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा।
0: नहीं नहीं, आपका मोहब्बत भरा एक जुमला मेरे लिए बहुत है। नहीं नहीं, किसी अलकाब और आदाब की कोई जरूरत
1: तो ये नज़ामत का जो मसला है ये तो बड़ा टेढ़ा मसला होता है, इसमें जितना झूठ बोलना पड़ता है लोग कहते हैं
0: बेशक बेशक बिल्कुल दुरुस्त है,
1: उसे कैसे मैनेज किया जाता है और अच्छी नज़ामत क्या होती है, मैं आपके हवाले से ये अपने सुनने वालों तक पहुंचाना
0: चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आपने जो खुद कहा कि बहुत झूठ बोलना पड़ता है, ये 100% सच है कि झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जब वो शुरू में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बहुत कुछ, यानी बिलावजह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, खाम खां की सताइश करनी पड़ती है, लेकिन बाद का जो हिस्सा होता है तो फिर वो बहुत सच्चाइयों के साथ शुरू होता है।
1: यकीनन उसकी तरतीब उस लिहाज से की जाती है,
0: लेकिन जैसे मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि निज़ामत इंतहाई मुश्किल चीज़ है,
1: यकीनन
0: बहुत, और मैं तो शायद वो हमारे नाज़िम मुशायरा कुछ लोग हों तो नाराज़ हो जाएं, निज़ामत कोई अच्छी शायरी नहीं, अब नहीं रही। एक ज़माने में हम जब मलिकज़ादा साहब को सुनते हैं, अनवर साहब को सुनते हैं, कुरैशी साहब को सुनते हैं, वो उस तरह की निज़ामत अब तो लफाजी हो रही है,
1: लफाजी हो गई, और कई बार शायर जितनी देर कलाम नहीं सुनाता उससे ज्यादा लंबी निज़ामत होती है।
0: हाँ, बेशक, बेशक।
1: और उसमें ऐसे लतीफे और बहुत वैसी चीजें जो जिन्हें हम किसी जमाने में मुब्तज़ल समझा करते थे,
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
1: उस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। और जाहिर है आपने इन तमाम चीजों से परहेज करते हुए एक पहचान बनाई अपनी, और इस हवाले से भी आपको याद किया जाता है, शायर के हवाले से तो याद किया ही जाता है। अब जो स्टेज, नया स्टेज है, यानी उर्दू में जो मुशायरे हो रहे हैं, उनसे आप किस हद तक मुतमईन हैं?
0: बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, सरासर मुतमईन नहीं हूँ, और कोई ज़िहिस, कोई ज़ी शऊर, शायरी का पारिक, वो कतई मुतमईन नहीं हो सकता, और उसे मुतमईन होना भी नहीं चाहिए। अगर वो मुतमईन हो गया तो ये समझ लें कि ये
1: उसके मजाक पर शुभा किया जा सकता
0: है। यस, एक छोटा सा वाक्या अगर वक्त
1: जी,
0: तो नेहरू सेंटर का एक मुशायरा ऐसा हुआ कि वहाँ शेनकाफ निज़ाम साहब आ रहे थे निज़ामत करने के लिए, लेकिन वो किसी सबब नहीं आ सके। तो लताफत खादी साहब और अब्दुल्ला साहब मेरे पास आए कि हाँ यार निज़ामत कर दें आप। अब आदमी सिर्फ शेर सुनाने के लिए गया है, वहाँ उसे कहा जाए कि आप निज़ामत कर दें, और वो भी फैज़ अहमद फैज़ के सेंटेनरी का मुशायरा था, और तरह ही मुशायरा था,
1: दिक्कत तलब था,
0: तो बहुत दिक्कत तलब, लेकिन अब वो अपने शहर की बात थी, मैंने अल्लाह का नाम लिया, जो भी शुरू में कहना सुनना था। अब कोई यकीन ना करे, लेकिन आप ज़रूर यकीन करेंगे कि मैंने उस मुशायरे में एक शेर नहीं सुनाया, और

0: मैंने पूरा मुशायरा चला दिया।
1: वाह।
0: और सिर्फ वो फैज साहब की यादें या जो कुछ मैंने फैज साहब को पढ़ा था
1: जी।
0: या जो भी उनकी रुदात थी जिंदगी की, बस उसको समेटते हुए मैंने, 12-15 लोग थे और वसीम बरेलवी साहब एक कोने में बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई कि मियाँ निज़ामत बहुत अच्छी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि कभी एक आदमी ने भी कह दिया कि मियाँ आपने खूब अच्छा कर लिया, बस उतना काफ़ी बड़ा इनाम होता है वो।
1: बेशक, निज़ामत के हवाले से बात हुई, शायरी का मिजाज व मेयार जो हम रसायल में पढ़ा करते थे और जो हम देखते और सुनते हैं, पहले भी इसमें एक फासला एक बहुत था। ऐसा
0: हाँ,
1: नहीं
0: था,
1: है कि
0: बिल्कुल
1: पहले चीज़ें
0: ना,
1: बिल्कुल
0: ना, ना, बिल्कुल था।
1: वैसी थीं जैसी होनी चाहिए, पहले भी था अब भी है। तो पहले और अब में जो फ़र्क है वो आपने देखा है, आपने दोनों ज़माने देखे हैं,
0: जी
1: उनसे सीखा है, उन नस्लों को सिखाया है जिनके हाथों में कमान है इस वक्त,
0: बिल्कुल,
1: आप उस फर्क को कैसे देखते हैं?
0: आपने खुद कहा कि पुराना ज़माना भी वो ख़राब शायरी को लिए हुए था, लेकिन उस वक्त जो उसका रेशो था वो बहुत कम था। उस वक्त बहुत ख़राब शायरी को कंडेम करने वाले लोग मौजूद थे,
1: कई बार स्टेज से ही करने लगते थे।
0: स्टेज से
1: जी,
0: कि आपने ज़रा सा कोई लफ्ज़ गलत पढ़ दिया, कहीं कोई आप बहक गए, आपने मज़मून गलत बांध दिया या वो समझ में नहीं आ रहा, तो बुज़ुर्ग जो बैठे रहते थे वो तो बिल्कुल
1: चरापा हो
0: महफिल,
1: जाते थे।
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: चरापा हो
1: बिल्कुल।
0: जाते थे कि साहब, और बाकायदा बिठा दिया जाता था, कैसे नाज़िम में मुशायरा बिठा देता कि सर
1: हम
0: बैठ
1: किसे
0: जाए,
1: शेर दिखाते हो
0: कैसे दिखाते, हाँ,
1: ये जुमला आ जाता
0: ये
1: था फौरन।
0: जुमला आ जाता। अब जो शायरी हो रही है वो बहुत कम अच्छी शायरी हो रही है, और शायरी को सुनकर और शायरों को देखकर जो शायरी हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक फैशन के तहत जो है वो हमारा नया लड़का नई बच्ची जो है, और दूसरे एक जो मैं वजह समझता हूँ कि अब मुशायरों में चूंकि पैसों की भी भरमार हो गई है, तो अब ऐसा लगता है कि यहाँ भी अपना करियर बनाया जा सकता है, तो उस करियर बनाने के चक्कर में तो शायरी तो नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल, मैं इसी बात की तरफ आना चाह रहा था
0: जी
1: कि पहले इसके जवाल के कई असबाब थे
0: बिल्कुल
1: और अब एक ही सबब सबसे बड़ा
0: बेशक
1: है माफ
0: बेशक,
1: कीजिएगा,
0: ना ना
1: बल्कि
0: ना,
1: एक की बजाय मैं दो इसलिए कहना चाहूंगा
0: हाँ
1: कि अब ये मुशायरे जिस तरह YouTube, सोशल मीडिया और उसके रील्स जिस तरह से वायरल होते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो एक तरफ तो मार्केट का प्रेशर है, दूसरी तरफ वो मकबूलियत का नशा है जो
0: नशा
1: मुफ्त
0: है,
1: हाथ आ
0: नशा
1: रहा
0: है,
1: है।
0: दुरुस्त फरमा रहे हैं।
1: लेकिन हम जिस मंजरनामे को देखते हुए या जहन में रख के गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ये बातें बहुत वाजे हैं। इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है जब हम मुशायरों के हवाले से बात करते हैं कि शायरी को सुनने और पढ़ने का शौक़ अब नई नस्ल में अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है।
0: हाँ है,
1: हाँ, और इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो शेर सुनना चाहते हैं, बल्कि मैं ज़ाती तौर पर कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने उर्दू ज़बान ही शेर पढ़ने
0: शेर
1: और शेर लिखने के लिए सीखी।
0: बिल्कुल सही, दुरुस्त है,
1: ये एक बहुत खुशाइंद जिन्होंने भी काम किया और जिस तरह इसे तहरीक की शक्ल दी, उन तमाम लोगों का को सलाम करता हूँ मैं। और हम शायरी के हवाले से बहुत बातें कर चुके हैं, ज़बान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करना चाहें तो क्या शायरी की मकबूलियत, उर्दू के जश्नों की मकबूलियत, उर्दू ज़बान की मकबूलियत है?
0: हाँ है, और मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ कि ये बाकी रहेगी,
1: इंशाल्लाह।
0: हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल रह गया एक बड़ा शोशा वो रस्मुल ख़त का, तो रस्मुल ख़त भी इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा, उसे ज़िंदा रखने वाले लोग रहेंगे
1: जी, और रहना चाहिए।
0: और रहना चाहिए, ऐसा नहीं
1: बिल्कुल।
0: कि वो ख़त्म हो सकती, मैं नहीं समझता कि उर्दू ख़त्म हो सकती।
1: अब हम ये चाहते हैं कि इतनी सारी गुफ्तगू के बाद अगर उसमें शायरी का रस न घोला जाए तो सुनने वालों के साथ ज्यादती हो जाती है। तो मैं
0: आपको
1: चाहता हूँ कि आप अपना पसंदीदा
0: जी जी
1: नुमाइंदा कलाम
0: जी जी मैं एक आध
1: हमारे
0: दो गज़लें
1: सामने की नज़र करें।
0: पेश कर देता हूँ। ये रह गुजारे शौक़ भी कितनी तवील है, ये रह गुजारे शौक़ भी कितनी तवील है, घर से चले थे सोच के दो चार मील है,
1: वाह,
0: ज़ुल्म व सितम ने मिस्र पे कब्ज़ा जमा लिया,
1: हाँ,
0: मूसा के इंतज़ार में दरियाए नील है।
1: क्या कहने, क्या तलमी का इस्तेमाल है साहब।
0: ज़ुल्म व
1: वाह
0: सितम ने मिस्र पे कब्ज़ा जमा लिया, मूसा के इंतज़ार में दरियाए नील है। शेर सुने कि अब और गम मिले, نہ ملے کوئی غم نہیں۔

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू मजलिश। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स। शाम के 4 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी।

तेरी है उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे आम शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे गोरे गोरे गोरे शर्म

अनजान अदाएं छोड़ के दर को तेरे बोल कहां हम जाएं।

0: बदले का क्या होगा हर हर।
1: 这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल।
0: और आज सबसे पहले ये बता देते हैं कि कार्यक्रम में क्या है खास। आज हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम्स के बारे में हम आपको बताएंगे, और अच्छे प्रदर्शन और जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी होगी वो सभी जानकारी आज एक खास रिपोर्ट में आज आपको हम सुनवाएंगे। क्रिकेट की बात करेंगे तो वुमेन्स टी20 एशिया कप शुरू हो चुका है, और भारत और थाईलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ उससे जुड़ी

0: रिपोर्ट भी आपको सुनवाएंगे। डीपीएल यानी कि दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मेंस के मुकाबलों का हो चुका है और फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है, यानी कि खिताबी टीम हमें मिल चुकी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यूएस ओपन 2026 के बारे में भी जानकारी देंगे, साथ ही साथ एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स के बारे में भी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के दौरान देंगे। और आज हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी कार्यक्रम में मौजूद है, रीमा यादव, उनका भी स्वागत है। आज ये पहली बार आपको अपनी रिपोर्ट सुनवाएंगी। और अतुल, क्यों ना शुरुआत कर लें हॉकी वर्ल्ड कप से।
1: जी हाँ दीपिका जी, हॉकी की बात करी आपने और हॉकी में जो है वर्ल्ड कप जो कि 15 अगस्त से शुरू हुआ था और कल खत्म हो चुका है। कल मेंस सीरीज के जो है वो मुकाबले खेले गए, फाइनल मुकाबले और कांसे बल्ले के मैच भी खेले गए, और उससे पहले महिला वर्ग में भी अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हराकर खिताब जीता। उस पर हम जानकारी अपने श्रोताओं को कल के अंक में दे चुके हैं। और बात करें मेंस ग्रुप की, तो वहां से एक पूरी रिपोर्ट पूरे विश्व कप में क्या हुआ, किसने जीता, कौन विजेता रहा, आइए सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
2: दो सप्ताह तक विश्व हॉकी के सबसे बड़े मंच पर चली जंग का कल 30 अगस्त को बेल्जियम के बावरे में समापन हुआ, और इस समापन पर एक बार फिर वही तस्वीर सामने आई जो 4 साल पहले भुवनेश्वर में देखने को मिली थी। जर्मनी की बादशाहत बरकरार है और वो विश्व चैंपियन है।
3: World Cup winners 2026 are Germany.
2: बेल्फियर्स हॉकी एरिना में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। निर्णायक गोल 44वें मिनट में मिशेल स्ट्रूथॉफ ने किया। यह जर्मनी का चौथा विश्व कप खिताब है और इसी के साथ उसने पाकिस्तान के 4 खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लेकिन इस जीत की खासियत सिर्फ 4 ट्रॉफियों तक सीमित नहीं है। जर्मनी पुरुष हॉकी विश्व कप के इतिहास में अलग अलग मौकों पर 2 बार लगातार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है, यानी 2002 और 2006 के बाद अब 2023 और 2026 दो विश्व कप चक्रों में जर्मनी ने लगातार अपना ताज बचाया है।
3: 5 seconds, the clock ticks down. It's heartbreak for Spain. It's history for Germany. The final hooter sounds, and Germany win the World Cup for the 4th time. They now become the most successful team in the men's World Cup history, because they go level with Pakistan on 4 titles. Both teams have been runners up twice, but Germany have 4 third place finishes to Pakistan's none. And the first team to go back to back for a second time. Huge congratulations to them. The final score in the men's FIH Hockey World Cup final for 2026 reads Spain 0, Germany 1.
2: 15 अगस्त को बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू हुआ यह विश्व कप 30 अगस्त तक चला। बावरे के बेल्फियर्स हॉकी एरिना और एम्स्टलवीन के वॉगनेर हॉकी स्टेडियम में दुनिया की 16 पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 4-4 टीमों के 4 शुरुआती पूलों से शुरू हुई। इसके बाद शीर्ष टीमों और दूसरे चरण की ग्रुप व्यवस्था ने सेमीफाइनल की तस्वीर तय की। इस नए प्रारूप में शुरुआती पूल के बाद टीमें दूसरे ग्रुप चरण में पहुंची और वहां से शीर्ष 2-2 टीमों ने अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई। शुरुआत से ही मुकाबला बेहद कड़ा था। मेजबान बेल्जियम और सह मेजबान और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स गत चैंपियन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्पेन और भारत जैसी टीमों पर निगाहें थीं। लेकिन विश्व कप आगे बढ़ा तो साफ हो गया कि केवल रैंकिंग और पुराना रिकॉर्ड काफी नहीं होगा। हर चरण में परिणामों ने नई कहानी लिखी। जर्मनी ने अपने दूसरे चरण के पूल एफ में 3 मैचों में 2 जीत के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि स्पेन 1 जीत 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दूसरी ओर नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना ने पूल ई में शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। यहीं से अंतिम 4 की असली लड़ाई तैयार हुई और इस पूरे सफर में एक बड़ा मोड़ मेजबान नीदरलैंड्स के सामने आया। सेमीफाइनल में स्पेन ने एम्स्टलवीन में नीदरलैंड्स को 4-3 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। नीदरलैंड्स ने शुरुआती बढ़त बनाई थी, लेकिन स्पेन ने तीसरे क्वार्टर में मुकाबले की दिशा बदल दी। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। मुकाबला लंबे समय तक बराबरी का रहा। जस्टिस वाइंगोट ने जर्मनी को बढ़त दिलाई। अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन ने पेनल्टी कॉर्नर से बराबरी की, लेकिन 54वें मिनट में पॉल फिलिप कॉफमैन के गोल ने जर्मनी को फाइनल में पहुंचा दिया। भारत की कहानी इस बार पदक तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन टूर्नामेंट में कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां जरूर रहीं। भारत दूसरे ग्रुप चरण में अपने 3 मैच हारने के बाद

में आठवें स्थान के मुकाबले में बेल्जियम से 3-3 की बराबरी पर रहा और शूटआउट में 3-4 से हार गया। इस तरह भारत आठवें स्थान पर रहा। इस मुकाबले में हार के बावजूद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अंतिम क्षणों में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को मुकाबले में वापस ला दिया था। व्यक्तिगत आंकड़ों में हरमनप्रीत की भूमिका और स्पष्ट दिखती है। उन्होंने 8 गोल किए और वे शीर्ष 3 गोल स्कोरों में रहे। उनके सभी 8 गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में 9 पेनल्टी कॉर्नर गोल किए, जो सभी टीमों में सर्वाधिक था। फिर भी पदक तक पहुंचने के लिए भारत को गोल करने के साथ साथ निर्णायक मौकों पर रक्षात्मक स्थिरता और निरंतरता में सुधार की जरूरत महसूस हुई। अब लौटते हैं उस मुकाबले पर जहां पूरे विश्व कप का फैसला होना था। 30 अगस्त की शाम बावरे के बेल्फियस हॉकी अरीना में जर्मनी और स्पेन आमने सामने थे। एक ओर गत चैंपियन जर्मनी था, दूसरी ओर 1998 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचा स्पेन। दोनों टीमों की ताकत अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक, विश्व कप की ट्रॉफी। पहला क्वार्टर जर्मनी के थोड़े अधिक दबाव के साथ शुरू हुआ। जर्मन टीम ने आक्रमण की कोशिशें की, लेकिन स्पेन की रक्षा पंक्ति ने रास्ते बंद रखे। दूसरे क्वार्टर में स्पेन ने अपनी गति बढ़ाई और कई अच्छे मौके बनाए। इनमें सबसे उल्लेखनीय मौका ओजरा लकाए के रिवर्स स्टिक का प्रयास था, जिसे जर्मनी के गोलकीपर जीन पॉल डोनबर्ग ने शानदार ग्लव सेव से रोक दिया। डोनबर्ग लगातार सक्रिय रहे और हाफ टाइम तक दोनों टीमों को गोल रहित रखने में उनकी अहम भूमिका रही। स्कोर था जर्मनी 0 स्पेन 0। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने दबाव और बढ़ाया। गेंद पर नियंत्रण, सर्कल में प्रवेश और मौके, कई संकेत स्पेन के पक्ष में थे, लेकिन हॉकी में एक अवसर भी पूरे मुकाबले का फैसला कर सकता है और वही क्षण 44वें मिनट में आया। स्पेन की ओर से गोलकीपर आगे बढ़ चुके थे। जर्मनी ने अपने मौके का इंतजार किया और मिशेल स्ट्रुथॉफ गोल के सामने पहुंचे। गेंद उनके पास आई और स्ट्रुथॉफ ने उसे खाली गोल में पहुंचा दिया। स्कोर हो गया जर्मनी 1 स्पेन 0। यह गोल तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने से लगभग 80 सेकंड पहले आया और जर्मनी की उस क्वार्टर में एकमात्र सर्किल एंट्री से बना निर्णायक अवसर था। अब स्पेन के सामने सिर्फ एक गोल की बराबरी का सवाल था। चौथे क्वार्टर में स्पेन ने लगातार दबाव बनाया, जर्मन डिफेंस को पीछे हटना पड़ा। स्पेन ने गोलकीपर को भी अंतिम 4 मिनट से कुछ समय रहते हटाकर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी उतारा ताकि बराबरी का मौका बढ़ाया जा सके, लेकिन जर्मनी की रक्षा पंक्ति नहीं टूटी। हर स्पेनिश हमला, हर कोशिश और हर संभावित बराबरी के मौके के बीच जर्मन डिफेंस ने अपना संयम बनाए रखा और जब अंतिम सीटी बजी, जर्मनी विश्व चैंपियन था फिर से। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जर्मनी के क्रिस्टोफर रूर चुने गए। टूर्नामेंट के व्यक्तिगत पुरस्कारों में स्पेन के लुइस कालजाडो को बेस्ट गोलकीपर, जर्मनी के जस्टस वारगेव को JSW राइजिंग स्टार और अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन को हीरो विडा टॉप स्कोरर तथा बेस्ट प्लेयर चुना गया। इस जीत के साथ जर्मनी के विश्व कप खिताबों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले जर्मनी ने 2002 में क्वालालंपुर में, 2006 में मोनशेन ग्लाडबाख और 2023 में भुवनेश्वर राउरकेला में विश्व कप जीता था और अब 2026 का बावरे उसी सूची में जुड़ गया है। पाकिस्तान ने इससे पहले 1971, 1978, 1982 और 1994 में 4 बार विश्व कप जीता था। इसलिए अब पुरुष विश्व कप के इतिहास में जर्मनी और पाकिस्तान संयुक्त रूप से सबसे अधिक 4-4 खिताब वाली टीमें हैं और लगातार खिताब की कहानी भी कम महत्वपूर्ण नहीं। जर्मनी 2002 और 2006 में लगातार विश्व चैंपियन बना था। 2023 में खिताब वापस पाने के बाद उसने 2026 में उसे फिर बचाया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। दो अलग अलग मौकों पर लगातार विश्व कप जीतने वाली पहली पुरुष टीम। स्पेन के लिए हार जरूर है, लेकिन उसकी यात्रा भी विश्व कप की बड़ी कहानी का हिस्सा है। 1998 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचकर स्पेन ने फिर साबित किया कि वो विश्व कप हॉकी की शीर्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाए हुए है। फाइनल में वे जर्मनी की दीवार को भेद नहीं सका, लेकिन रजत पदक उसके लंबे इंतजार के बाद आया एक महत्वपूर्ण विश्व कप परिणाम है। कांस्य पदक अर्जेंटीना के नाम रहा। उसने तीसरे स्थान के मुकाबले में मेजबान नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया और पदक हासिल किया। सेमीफाइनल में हार के बाद अर्जेंटीना और मेजबान नीदरलैंड्स के सामने कांस्य पदक बचाने की चुनौती थी। मुकाबले में नीदरलैंड्स ने शुरुआत में दबाव बनाया, लेकिन अर्जेंटीना की रक्षा पंक्ति ने उसे गोल में नहीं बदलने दिया और हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 रहा। तीसरे क्वार्टर में 41वें मिनट में टॉमस डोमेन के डिफ्लेक्शन से अर्जेंटीना ने बढ़त बनाई। नीदरलैंड्स ने 49वें मिनट में फ्लोरिस मिंडेडोर्फ के गोल से बराबरी कर ली, लेकिन 59वें मिनट में 41 वर्षीय मोटियास रे ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अर्जेंटीना को 2-1 से जीत दिला दी। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने विश्व कप में अपना दूसरा पदक हासिल किया, जबकि नीदरलैंड्स 20 वर्षों में पहली बार पुरुष विश्व कप में पदक से बाहर हुआ। मुकाबले में अर्जेंटीना के टॉमस रुइस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब नजर डालें विश्व कप की अंतिम शीर्ष 8 टीमों पर। चैंपियन

0: जर्मनी पहले स्थान पर रहा, स्पेन ने रजत पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और अर्जेंटीना कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान नीदरलैंड्स चौथे स्थान पर रहा, पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, छठे पर इंग्लैंड, सातवें पर बेल्जियम और आठवें स्थान पर भारत रहा। यानी अंतिम आठ में यूरोप की पांच टीमें जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड और बेल्जियम, जबकि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने भी जगह बनाई। जब पूरे टूर्नामेंट के आंकड़ों पर नजर जाती है तो 248 गोल दर्ज हुए, इनमें से 136 फील्ड गोल, 97 पेनल्टी कॉर्नर गोल और 15 पेनल्टी स्ट्रोक गोल शामिल रहे। शीर्ष स्कोरर अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन रहे, जिन्होंने 10 गोल किए। उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के मुस्तफा कैसियम और भारत के हरमनप्रीत सिंह 8-8 गोल के साथ रहे। सबसे ज्यादा टीम गोल न्यूजीलैंड ने किए, कुल 21 गोल। इस तरह 15 अगस्त को शुरू हुआ विश्व कप 30 अगस्त को जर्मनी के ताज बचाने के साथ समाप्त हुआ। शुरुआत में 16 टीमों की चुनौती, नए प्रारूप का दबाव, दूसरे चरण की कड़ी लड़ाई, सेमीफाइनल में स्पेन का उलटफेर, अर्जेंटीना का कांस्य पदक और अंत में बावरे में जर्मनी की एक गोल वाली जीत, इन सब ने 2026 विश्व कप को अपनी अलग पहचान दी। भारत पदक दूर से रहा, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की 8 गोल की उपलब्धि और पेनल्टी कॉर्नर में टीम का प्रभाव आने वाली चुनौतियों की एक तस्वीर जरूर देता है। भारतीय हॉकी टीम के लिए अब लक्ष्य साफ है, विश्व कप के मंच पर फिर से पदक की दौड़ में मजबूती से लौटना। और जर्मनी के लिए कल की रात सिर्फ एक और ट्रॉफी की रात नहीं थी, ये उस टीम की रात थी जिसने दबाव सहा, एक निर्णायक मौका पहचाना और फिर आखिरी सीटी तक अपनी बढ़त बचाए रखी। विश्व कप हॉकी का सबसे बड़ा खिताब एक बार फिर जर्मनी के नाम रहा। बावरे की रात में एक गोल ने फैसला किया और इतिहास में 4 सितारे जोड़ दिए।
1: अब हॉकी के बाद बात करते हैं विमेंस क्रिकेट की। भारत ने महिला T20 एशिया कप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 94 रन से पराजित किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 16 ओवर और एक गेंद में केवल 65 रन पर सिमट गई। भारत की शानदार जीत में गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई। अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपने 150वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए और इस दौरान एक भी रन नहीं दिया। दीप्ति शर्मा की यह उपलब्धि उन्हें महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बना देती है। उसके अलावा नंदिनी शर्मा ने भी 3 विकेट चटकाए, जब श्री चरणी को 2 विकेट मिले। भारतीय गेंदबाजों के सामने थाईलैंड की बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में नजर आई। टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और 65 रन पर उनकी पारी समाप्त हो गई। इससे पहले भारतीय पारी की शुरुआत अच्छी रही थी। भारत की शीर्ष 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 105 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना,

विटामिन, खनिज और फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, कब्ज से बचाव करने और हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक है। प्रतिदिन विभिन्न रंगों के फल और सब्जियां खाने का प्रयास करें। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इसलिए आहार में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना आवश्यक है। इसके लिए दूध, दही, पनीर, रागी, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छे विकल्प हैं। प्रतिदिन लगभग 300 से 400 ml दूध एवं दूध से बने उत्पाद जैसे दही और पनीर तथा पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करें। इसके साथ ही लगभग 30 ग्राम तक सूखे मेवे और बीज भी आहार का हिस्सा हो सकते हैं। अर्थात भोजन की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे बुजुर्गों की थाली में क्या क्या होना चाहिए। सुबह का नाश्ता हल्का लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। इसमें साबुत अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, उबले हुए चने, मूंग या लोबिया, हरे पत्तेदार सब्जियां और साथ में 100 से 150 ml दूध तथा 10 से 15 ग्राम मेवे और बीज लिए जा सकते हैं। यह शरीर को दिन की शुरुआत के लिए अच्छी ऊर्जा देता है। दोपहर के खाने में कम से कम एक तिहाई हिस्सा चोकर युक्त या साबुत अनाज का होना चाहिए, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा या मल्टीग्रेन आटे की 2 या 3 रोटियां। इसके साथ 30 से 40 ग्राम दाल, भरपूर मात्रा में हरी और अन्य सब्जियां, दही या पनीर और खाने के अंत में कोई भी एक मौसमी फल शामिल करें। शाम के समय बिना चीनी या बहुत कम चीनी वाली एक कप दूध की चाय या कॉफी ली जा सकती है। नींबू पानी, नारियल पानी के साथ 10 से 15 ग्राम सूखे मेवे और बीज भी लिए जा सकते हैं। रात का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले लेना चाहिए। इसमें अनाज, हल्की दाल, सब्जियां, थोड़ी सी दही और ताज़े फल का रस शामिल किया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए भोजन अच्छी तरह पका हुआ और नरम होना चाहिए ताकि उसे चबाने में और पचाने में आसानी हो। भोजन न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, बल्कि उचित तापमान पर परोसा जाना चाहिए। भोजन में नमक की मात्रा कम रखें और मसालों का प्रयोग सीमित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन शांत, सुखद और खुशहाल माहौल में परोसा जाए। परिवार का साथ और सकारात्मक वातावरण भोजन में रुचि बढ़ाने में और भूख को बेहतर करने में सहायक हो सकता है।

है। एक और ज़रूरी चीज़ है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह है पानी। वृद्धावस्था में अक्सर प्यास का एहसास कम हो जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी, कब्ज, कमजोरी, चक्कर, मूत्र संक्रमण जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीते रहें। लगभग 2 लीटर पानी यानी 8 से 10 ग्लास पानी या तरल पदार्थ जरूर लेने चाहिए। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आजकल बाजार में ऐसे अनेक खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं जिनमें अधिक मात्रा में नमक, चीनी और वसा के साथ साथ विभिन्न कृत्रिम पदार्थ भी पाए जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो इनका सेवन कम करें और इनके स्थान पर घर का ताज़ा, पौष्टिक और संतुलित भोजन करें। साथ ही पूरे दिन में चीनी का सेवन लगभग 20 से 25 ग्राम से अधिक न हो। लेकिन वृद्धावस्था में स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने के लिए केवल पौष्टिक भोजन और स्वस्थ खानपान की आदतों का पर्याप्त होना काफी नहीं है। इसके साथ नियमित और क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही आवश्यक है। नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। यह शरीर का वजन नियंत्रण रखने में, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में और शारीरिक सक्रियता बनाए रखने में मदद करता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से रक्तचाप को नियंत्रित रखने में और मधुमेह के जोखिम को कम करने में भी सहायता मिलती है। उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे गठिया, मोटापा, स्ट्रोक, हृदय रोग तथा कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स के जोखिम को कम करने में भी नियमित शारीरिक गतिविधि सहायक हो सकती है। तनाव और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में भी शारीरिक गतिविधि मदद कर सकती है। इसके अलावा नियमित शारीरिक गतिविधि से शरीर का संतुलन बेहतर रहता है, गिरने का जोखिम कम हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। इसलिए अपनी आयु और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन लगभग 30 से 45 मिनट की हल्की मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधि करने का प्रयास करें। इसके लिए तेज चाल से चलना, हल्का योग और प्राणायाम, हल्के व्यायाम, स्ट्रेचिंग, संतुलन बनाए रखने वाला व्यायाम अपने दिनचर्या में शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के संपर्क से शरीर में विटामिन डी के निर्माण में सहायता मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो व्यायाम शुरू करने या उसकी तीव्रता बढ़ाने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। वृद्धावस्था में स्वस्थ और सक्रिय जीवन बनाए रखने में परिवार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वृद्ध व्यक्तियों को परिवार के सहयोग, देखभाल और भावात्मक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्य उन्हें समय पर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं, उन्हें परिवार के साथ बैठकर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करें, नियमित सैर और हल्के शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करें, उनके स्वास्थ्य की नियमित जाँच करवाने में सहयोग करें और उनके साथ समय बिताएं और उन्हें अकेलापन न महसूस होने दें। याद रखिए, स्वस्थ वृद्धावस्था पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि वृद्धावस्था में स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो सकती है। सुबह समय पर उठें, उठने के बाद कुछ समय अपने शरीर को सक्रिय बनाने के लिए दें। दिन की शुरुआत जल्दबाजी की बजाय शांत और सकारात्मक सोच से करें। सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताएं। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार हल्की सैर करें। सैर के बाद हल्का योग, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग किया जा सकता है। लगभग 30 से 45 मिनट की हल्की या मध्यम शारीरिक गतिविधि का दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। व्यायाम के बाद हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता दिन को एक अच्छी शुरुआत देता है। नाश्ते में साबुत अनाज या मिलेट्स से बनी रोटी के साथ सब्जियाँ या सब्जी वाला दलिया, ओट्स अथवा रागी की इडली ली जा सकती है। इसके साथ उबले चने, मूंग या लोबिया, हरी पत्तेदार सब्जियां, 100 से 150 ml दूध तथा 10 से 15 ग्राम मेवे और बीज शामिल किए जा सकते हैं। नाश्ते के बाद कुछ समय अपनी रुचि की गतिविधियों के लिए निकालें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, संगीत सुनें और अपने पसंद की कोई रचनात्मक कार्य करें, ध्यान या प्राणायाम करें। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए मानसिक रूप

0: से सक्रिय और प्रसन्न रहना भी महत्वपूर्ण है। दोपहर का भोजन संतुलित और आसानी से पचने वाला हो। थाली में रखे साबुत या चोकरयुक्त अनाज, 30 से 40 ग्राम दाल, हरी एवं अन्य सब्जियां, दही या पनीर और एक मौसमी फल। दोपहर के भोजन के बाद शरीर को आराम देने के लिए कुछ समय विश्राम किया जा सकता है। यदि नींद लें तो बहुत लंबी दोपहर की नींद की बजाय हल्का और सीमित विश्राम रखें ताकि रात की नींद प्रभावित ना हो। शाम के समय एक कप चाय या कॉफी के साथ हल्का एवं पौष्टिक नाश्ता लिया जा सकता है। इसके बाद शाम की सैर के लिए जाएं और इस समय को केवल व्यायाम तक सीमित ना रखते हुए वॉक एंड कनेक्ट का समय बनाएं। दोस्तों या हम उम्र के साथियों के साथ टहले, पड़ोस के अन्य वरिष्ठ नागरिकों से मिले, बातचीत करें, हंसें और अपने अनुभव साझा करें। रात का भोजन हल्का, आसानी से पचने वाला, कम नमक और सीमित मसालों वाला, अच्छी तरह पका और नरम होना चाहिए। रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। रात के भोजन के बाद कुछ समय परिवार के साथ बिताएं, बच्चों से बातचीत करें, पोते पोतियों को कहानियां सुनाएं, उनके साथ अपने अनुभव साझा करें, परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक और बातचीत करें। प्रिय श्रोताओं, उम्र बढ़ना जीवन की रफ्तार को रोकना नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक स्वाभाविक और सम्मानजनक चरण है। बस आवश्यकता है कि अपनी दिनचर्या को उम्र के अनुसार ढालने की। सुबह शरीर को सक्रिय रखें, दिन भर मन को व्यस्त और प्रसन्न रखें, भोजन को पौष्टिक एवं संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नमक, चीनी और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करें, धूम्रपान, तंबाकू और शराब के सेवन से बचें, शाम को अपनों के साथ समय बिताएं और रात को पर्याप्त नींद लें। यही है स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल वृद्धावस्था की सरल दिनचर्या।
1: तो ये सुन रहे थे हम खान पान, वृद्धावस्था में सेहत का ध्यान कैसे रखें, खान पान कैसा हो और दिनचर्या, विशेषज्ञ मीना दीपा आहार से।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी थी राजेश भाई। और एक हम जानकारी अपने भाई बहनों को दे दें, कहते हैं कि अगर हम उन बच्चों और युवाओं की तरफ ध्यान दें जिनके भीतर खेल का हुनर हो और सही प्रशिक्षण और सुविधाएं अगर उनको नहीं मिल रही है तो वो प्रतिभा जो है ना राजेश भाई आगे नहीं बढ़ सकती है।
3: बिल्कुल।
2: तो ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए सरकारी योजनाएं और अवसर, इस पर हम आज अपने भाई बहनों से बात करेंगे कि भारत के गांव में खेल प्रतिभाओं की कोई भी कमी नहीं है। कहीं बच्चा कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करता है तो कहीं कोई युवा दौड़, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल या तीरंदाजी में अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखता है। जरूरत है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर की। और भारत सरकार ऐसे में खेलो इंडिया कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अंतर्गत खेल अकादमियों, प्रशिक्षण केंद्रों और खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने तथा अपने प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जो राष्ट्र ग्रामीण खेल प्रतिभा के लिए वो योजनाएं हैं, उनमें खेलो इंडिया योजना है जो ग्रामीण और छोटे शहरों के प्रतिभाओं को पहचान कर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। खेलो इंडिया सेंटर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, साई प्रशिक्षण केंद्र, स्कॉलरशिप और खेल छात्रवृत्ति, खेल आवास, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, सरकारी नौकरियों में खेल कोटा, पुरस्कार प्रोत्साहन राशि, महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष अवसर, पंचायत और स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं, फिट इंडिया अभियान और स्थानीय खेल मैदान और सुविधाएं।
2: तो भाई इन सभी के जरिए हमारे जो हुनर छिपे जो भी हमारे युवा है वो वहां तक पहुंच सकते हैं। और कहते हैं कि गांव की पगडंडियों से लेकर देश के बड़े खेल मैदानों तक पहुंचने का रास्ता अब पहले से अधिक खुला है। जरूरत है प्रतिभा को पहचानने, सही प्रशिक्षण देने और अवसर तक पहुँचने की। गाँव की मिट्टी में जो छिपी प्रतिभा को अगर सही अवसर मिले तो वही प्रतिभा देश का नाम रोशन कर सकती है। और इसके बाद क्यों ना हम जाते जाते अपने जो भाई बहन है उनका मनोरंजन कर दे। तो आइए सुनते हैं सविता शर्मा से ये लोकगीत।

0: तो अभी आप सविता शर्मा से सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: और इसी के साथ हमें कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करना होगा। तो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
0: राम
1: राम राम।
0: राम।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है।

0: इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। यूएई ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम राम।
0: राम। तो सत्तावन, देखो पड़ोसी देश में इस वक्त जिस तरीके से बाढ़ आई विनाशकारी, उससे काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ। और बाढ़ जब आती है तो उसके बाद किस तरीके के नुकसान होते हैं उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन
1: बिल्कुल
0: ये है कि हम उससे पहले अपनी तैयारियों से काफ़ी हद तक जो है अपने आप को हम कोशिश कर सकते हैं बचाने की। और साथ में कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, इसके बारे में आइए डॉक्टर विपिन कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं, जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, तो उनसे सुनते हैं।
2: भाइयों नमस्कार। आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सूखा, बाढ़ और भी आपदाएं आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। लेकिन मौसम बरसात का चला हुआ है और इस बरसात के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलती है कि बाढ़, और बाढ़ किस तरीके से कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती है और उसका किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, इस विषय पर आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विपिन कुमार जी को, जो कि वैज्ञानिक हैं जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर विपिन कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये बाढ़ क्या है। और
3: देखिए, जैसे बाढ़ ये सभी के जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। तो बाढ़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बाढ़ वो है जैसे कि बारिश हुई, अगर वो पानी कहीं पर रुक जाए, जो जल का ऊपरी स्तर है, जो कहते हैं धरातल है, उस पे वो इकट्ठा होगा। तो उस तरह के इकट्ठा होना की प्रक्रिया एक बाढ़ की प्रक्रिया है। सिंपल तरीके से हम अगर हम समझना चाहें तो, चाहे खेत भी हो सकता है, चाहे आपका घर भी हो सकता है, आपकी सड़कें हो सकती हैं, या कहीं बाहर से नदियों के द्वारा

0: पानी आ रहा है और वो ओवरफ्लो होके आपके क्षेत्र में आ गया, इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनको बाढ़ बोलते हैं या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ नदियों से आता है, अगर पहाड़ी क्षेत्र में बरसात ज्यादा हो जाती है तो वो भी बह के आता है,
0: एकदम
1: वो भी
0: एकदम
1: बाढ़ का रूप
0: वो भी
1: लेता
0: बाढ़
1: है।
0: वही नदियों के द्वारा वही आता, नदियों का जल स्तर आपको देखने को मिलता होगा कि आपके वहाँ पानी तो नहीं बरसात हुई लेकिन आपके वहाँ बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जब पानी ज्यादा गिरता है, जो नदियों का जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जिसके वजह से वो आपके घरों में आपके खेतों में आ जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, बाढ़ हर क्षेत्र में तो आती नहीं, कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ आती है और आने की संभावनाएं रहती हैं?
0: देखिए, अमूमन अगर देखा जाए तो हमारा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां हैं जो हमारे, इनके जो आसपास जो स्टेट हैं जिनसे ये गुजरती हैं वहां पर बाढ़ को देखने को मिलेगा। तो हम अगर बात करें आसाम, जो आसाम है करीबन 35 जिले हैं जिसमें से 18 जिले बाढ़ से हमेशा क्षतिग्रस्त रहते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो पश्चिम बंगाल भी हमारा बाढ़ प्रभावित राज्य है, उसके बाद बिहार आता है, उड़ीसा आता है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जो गंगा आती है बहते हुए, बाढ़ आपको देखने को मिल सकता है। ये तो ऐसी क्षेत्र जहां पर आपको अमूमन हर साल कभी ना कभी बाढ़ आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन पंजाब में भी और राजस्थान में भी आपको कभी कभी देखने को मिला होगा कि बाढ़ यहाँ भी आ गई। उसका कारण यह है कि राजस्थान का तो ये है कि बारिश अभी अचानक होने लगी है, बहुत ज्यादा हो जाती है
1: जी।
0: तो राजस्थान के जो जमीन का ऐसी संरचना है जिसमें पानी नीचे नहीं जाता, वहां पर एक जिप्सम की लेयर है तो जिससे वो नीचे की तरफ बहाव नहीं होके ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। और दूसरी जो पंजाब में है, पंजाब में भी नदियां हैं, और अगर हम साउथ में अगर देखें आपको नवंबर और जनवरी में मिलेगा, क्योंकि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर बारिश का जो समय है वो हमारे यहाँ से विपरीत है। और कुछ समुद्री इलाकों में भी, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में साइक्लोन के साथ पानी का चला आना, इसी तरह महाराष्ट्र, इसी तरह से केरला, कुछ क्षेत्र हैं जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बाढ़ आपको देखने को मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मौसम भी बदल रहा है और मौसम बदलाव के साथ कहीं कहीं पे देखने को मिलता है एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो गई और कहते हैं कि बादल फट गया, तो उस स्थिति में भी कुछ सीमित क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है?
0: जो बारिश की अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरस गया तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। कभी कभी बहुत ही ज्यादा पानी, और कभी कभी पहाड़ों पर जो स्थिति होती है, कहते ना बादल फट गए, तो वो एक ऐसी स्थिति है कि जब धरातल पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है जो उस धरातल के लिए, वो उस पीरियड के लिए उतनी आवश्यक नहीं होता, तो इसके वजह से वो एक वेलोसिटी और एक वेग रूप में वो बहना स्टार्ट कर देता है। आप देखोगे कि ये डिस्ट्रक्शन एक कहते नुकसानदायक होता है। तो इस तरह से परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी और यही है कारण, एक तो वर्षा, दूसरा नदियों में बहाव अचानक ग्लेशियर से अगर या किसी वजह से पिघल कर, या नदियों का जो जल स्तर है उनमें अचानक ज्यादा बढ़ाव आ जाए, वो भी एक कारण है। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में समुद्र की लहरें कभी कभी बहुत ही ज्यादा ऊंची हो जाती हैं और वो हमारे धरातल की तरफ बढ़ जाती हैं, ये मुख्य कारण है।
1: जो बाढ़ का असर है वो हमारे मानव के ऊपर पड़ता है, तो डॉक्टर साहब इसको कैसे देखें?
0: देखिए, बाढ़ एक कहा देखा जाए तो बहुत ही दयनीय परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, दो तरह से नुकसान होता है। स्ट्रक्चरल नुकसान, जो कभी न जाने कितने दिनों तक कोई परिवार घर बनाया रहता है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया रहता है, अपनी कारखाना या व्यापार या खेती, ये पूरी तरह से उसको डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे बीमारियां भी नई नई ला देता है, अचानक पानी से संबंधित बीमारियां हैं, मलेरिया है और डायरिया है, इस तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, तो पूरी तरह से वहां का व्यापार ठप हो जाएगा, पूरी तरह से जो उनकी सर्विसेज, चाहे वो कुछ भी हो, खान पान या बिजली, सब कुछ प्रभावित होती है, जिसके वजह से उनकी पूरी जीवन एक तरह से नरक बन जाता है। तो ये इकोनॉमिकल भी है, सोशल, साइकोलॉजिकल, हर तरह से डैमेज करता है जिन क्षेत्रों में ये आता है। अभी आपको आसाम में देखने को मिला होगा कि कितने लोगों की जानें चली गईं, कितने ज्यादा घर टूट गए।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि और जब इसका असर बाढ़ का मानव स्वास्थ्य पे पड़ता है और उसके साथ साथ जो हमारी खेती है उसको भी प्रभावित करती है।
0: जैसे मान लीजिए जिन क्षेत्रों में की इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, तो उनके लिए तो पूरी तरह से ये बहुत ही, कोई भी फसल है अगर जल जमाव लंबे समय तक हो जाता है तो कोई भी फसल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और क्या होता है कि वो खत्म हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे कि जितनी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर भुखमरी, गरीबी

0: बहुत ही देखने को मिलेगी। इसके कारण यही है कि लोगों की जो कृषि है, जैसे उनकी मवेशी हैं वो
1: जी
0: भी दह जाते हैं, तो कृषि को या उनका कोई भी व्यापार है उसको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है।
1: तो डॉक्टर साहब, फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बाढ़ नियंत्रण की बात है तो ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं, एक सामूहिक और एक हर लेवल पर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम खेती की ही अगर हम बात करें तो बाढ़ उतनी भयावह लेवल पर नहीं है, तो हमें ध्यान देना। तो उन क्षेत्र के जो किसान हैं वो सिंचाई देने के साथ साथ वो अपने खेतों में बाढ़ नियंत्रण के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बना के रखें पहले से। जैसे जो ड्रेनेज के चैनल हैं उसको आप टेम्प्रोरी भी चैनल भी बना सकते हैं, जैसे कच्चे भी बन सकते हैं और परमानेंट स्ट्रक्चर भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जो बाढ़ आती है उसका ड्यूरेशन ज्यादा लंबा नहीं होता है, जो टेम्प्रोरी पानी का आएगा तो उस टेम्प्रोरी पानी को जो 8 दिन या 1 हफ्ता लगने वाला है उसको निकालने के लिए आपके पास सुगम व्यवस्था होनी चाहिए, वो है ड्रेनेज। तो
1: जी
0: मैं तो किसानों से यही बोलूंगा कि आपके खेत में हर के आउटलेट होने चाहिए, उस जगह पर आप निर्धारित कीजिए जो खेत आपका ढलान की तरफ भाग रहा है वहां पर कुछ आउटलेट दीजिए और वो एक सामूहिक ड्रेनेज लाइन से उसका जुड़ाव हो, जिससे क्या हो कि अगर पानी नदियों का बह के या बरसात से ज्यादा रहता है तो आप उसको खोल दें जिससे वो बह के सीधे आपके पानी खत्म हो जाए। दूसरा ये भी है, आपको जैसे है कि आज की देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है इन पे भी डिपेंडेंट रहना है। जैसे फसल है लगा लिया, इस बार हमारा जो पहले से अनुमान था कि इस बार थोड़ी बरसात का सिचुएशन कुछ अनबन रहेगा, जैसे एल नीनो
1: जी
0: का
1: जी
0: प्रेडिक्शन आ गया था,
1: जी
0: तो इस तरह की भी जानकारियों को भी हमें इकट्ठा करने की जरूरत है।
1: के अनुसार ही
0: हाँ,
1: फसलों का
0: अपने को
1: चुनाव
0: फसलों का
1: करें।
0: चुनाव करो। तीसरी चीज यह है कि गवर्नमेंट का भी बहुत ही इन सब तरह के हमारे किसान सुरक्षित रहें तो फसल बीमा एक बहुत ही अच्छा आपका कह सकते हैं सिक्योरिटी देने का एक तरीका है, जिसमें अगर आप अपनी प्रीमियम जो है बहुत ही मिनिमम होती है, जो सीरियल क्रॉप्स हैं मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं और जो हॉर्टिकल्चर की हैं थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप लोग फसल का बीमा भी करा लें, जिससे क्या है कि आपको अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जब सरकार ऑलरेडी डिक्लेयर कर देती है कि नहीं ये क्षेत्र एक तरह बाढ़
1: बाढ़
0: प्रभावित
1: प्रभावित
0: क्षेत्र हो चुका, तो उस
1: जी
0: दशा में आप अगर आप कराए रहेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन मिलने के संभावनाएं रहती हैं। और उसके अलावा एक चीज और भी है कि हमें भी देखना है कि गांव में जो भी नालियां होती हैं उसके किनारे लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, अपना अपना जगह बना ले,
1: जी
0: कब्जा
1: जी
0: कर लेते हैं,
1: जी
0: उस तरह से नहीं करना। जो आपके परदादाओं के टाइम से जो चैनल बने पड़े हैं उनका कुछ महत्व रहा है, जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका
1: जी
0: कुछ महत्व रहा है,
1: बिल्कुल,
0: आप
1: तालाब वगैरह।
0: उनको घेर मत लीजिए। आप गांव में एक तालाब देखेंगे तो तालाब ऐसी जगहों पर हुआ करता था जो ढलावन वाली एरिया में हुआ करता था, लोग क्या करते हैं उसी पॉन्ड के चारों तरफ बस जाते हैं जिससे उसमें पानी बाहर से आके इकट्ठा होने में अवरुद्ध होता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमको अपने लेवल पर करना चाहिए और सरकार स्टेट डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक बॉडी है ऑलरेडी वो भी प्रयास करती है।
1: जी बिल्कुल, सरकार भी एक योजना लेके आए थे, कैच द रेन ये कार्यक्रम, तो इसके तहत आप क्या कहना चाहेंगे
0: मैं
1: किसान
0: देखिए,
1: भाइयों को?
0: बाढ़ को हम कैच द रेन उसी लेवल पर कर सकते हैं जब इसका थोड़ा इंटेंसिटी कम हो।
1: जी
0: जैसे आप जो कह रहे हैं कैच द रेन, जैसे हमारे पास अगर कम्युनिटी पॉन्ड है, हमारे पास लग रहा है कि हमारे खेतों में पानी ज्यादा हो गया है और हमारे आसपास के जो पॉन्ड है उनमें पानी कम है, तो हम क्या कर सकते हैं उस पानी को उस रेन को डाइवर्ट करके उस पॉन्ड में इकट्ठा करवा लेंगे,
1: जी
0: जिससे क्या होगा कि फिर जब हमारी पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी फिर हम उस वहां सिंचाई कर लेंगे। उस दशा में तो ठीक है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिस स्थिति में यह है कि हमको किसी भी कारण से पानी को अपने खेत से अपनी जगह से हटाना है, वो स्थिति बाढ़ की
1: जी
0: स्थिति होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बाढ़ का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जो कृषि फसलें प्रभावित होती हैं, एक हमारे जो किसान भाई हैं जो भी खेती करते हैं उनके साथ पशु भी होते हैं, तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बाढ़ एक ऐसा परिस्थिति है जिसमें आपको बोल रहा हूँ ना स्ट्रक्चरली डैमेज करता है। अगर आप पशु पाले हैं और बाढ़ की स्थिति है तो सीधी सी बात है कि जो कम्युनिटी शेल्टर्स हैं, आपको लगता है कि हमारे एरिया में आता ही आता है ये, तो जो जिला प्रशासन द्वारा कुछ शेल्टर्स बनाए जाते हैं, आप देखे
1: जी
0: होंगे बाढ़ों के बांध बंधे होते हैं उनके ऊपरी परिस्थितियों में, आपको लग रहा है कि आपके एरिया में जल का स्तर अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है, वार्निंग होती है, आपको पहले से अवेयर रहने की जरूरत है। जैसे आपको लगता है अपने मवेशियों के साथ आप शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि बाढ़ ज्यादा आ गई तो डेफिनेटली आप उस जगह पे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये भी एक कंप्लीट नुकसान होने से अच्छा है कि आप पहले प्रिकॉशन जरूर ले लें। और दूसरी,
1: जी
0: जहां पर थोड़ी कम बाढ़ आती है लेकिन उतनी लेवल की नहीं है, तो चारे की सबसे बड़ी संकट उत्पन्न होती है, ऐसी कंडीशंस में किसानों को लगता है कि हमारे यहाँ बाढ़ आता है, तो मैं कहूंगा कि उनको जैसे जो

0: नहीं सकते,
1: इसलिए
0: लेकिन
1: 2005 में
0: प्रबंधन
1: इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर लाया गया। ये एक आपदा है, इसके लिए सचेत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: आपको सचेत रहना है, आप रोक नहीं सकते लेकिन प्रबंधन कर
1: प्रबंधन
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: डॉक्टर विपिन कुमार जी, आप स्टूडियो में आए और कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन पर आपने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये बातचीत सुन रहे थे कि किस तरीके से आप बाढ़ जैसी विपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो है
3: जी बेहतर
2: काफी
3: योजना, उचित फसल चयन और जल प्रबंधन के जरिए कृषि के होने वाले नुकसान और जो इंसानों का नुकसान होता है, जो आर्थिक जान माल को नुकसान होता है, उसका आप बचाव कर सकते हैं।
2: ये डॉक्टर विपिन कुमार जी जो कि वैज्ञानिक हैं, जल संरक्षण केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, उनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल जी।
3: और इस जानकारी के बाद आइए करते हैं हम अपने भाई बहनों का मनोरंजन और सुनते हैं ये उपदेश योगेंद्र निमचाना से।

0: तो अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र नेमचाना से उपदेश, और इस उपदेश के बाद राजेश भाई क्यों ना हम अपने किसान भाई बहनों से कुछ जानकारी की बात, मतलब जानकारी दे दे। और अगर हम जानकारी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में उनको हम कुछ बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो सरकार की तरफ से तमाम जो किसान भाइयों को ध्यान में रखकर वो सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई है।
0: जी हाँ, और कहते हैं ना राजेश भाई की खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन को मजबूत करने की आधारशिला है, और किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और खेती से जुड़े दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है, और इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इससे क्या किसानों को फायदा मिलेगा और इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का विकास करना है, और इसके तहत राज्य अपने स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि से जुड़ी परियोजनाएं चलाती हैं, जिसमें खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों की भी बढ़ावा दिया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का समग्र विकास, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और निवेश को बढ़ावा देना है। और योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत 2007-08 में हुई। इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि क्षेत्र में अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार परियोजनाएं लागू करने में मदद करना है। कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे संबंध क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। सिंचाई, कृषि आधारभूत ढांचे और उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन और उत्पादकता का वातावरण तैयार किया जाता है। इसके अलावा कृषि से जुड़े स्टार्टअप

0: और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना के अंतर्गत पहले की गई हैं, और राज्यों को स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताएं तय करने की सुविधा मिलती है।
1: और भाई अगर हम ये पूछे कि इस योजना की जानकारी कैसे मिलेगी, तो हम यही कहेंगे कि किसान अपने नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं जो हैं और पात्रता है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई बहन हैं, खेती में नई तकनीक अपनाना आज समय की ज़रूरत है, ये तो वो जानते ही हैं। मिट्टी की जांच, अच्छे बीजों का चुनाव, पानी की बचत, वैज्ञानिक तरीके से खेती और फसल के बेहतर प्रबंधन से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं ना कि सही जानकारी, सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही लाभ किसान की तरक्की का मजबूत आधार बन जाता है।
0: बिल्कुल। और दूसरा ये कि सरता बहन जीवन में ना कहा जाता है कि जो अच्छी आदतें रखनी चाहिए, लेकिन जब कुछ बुरी लत लग जाए तो फिर क्या होता है, तो वो गाने के जरिए सफदरजंग राणा और किरण शर्मा से सुनते हैं।

0: तो ये सुन रहे थे सफदरजंग राणा और किरण शर्मा से, और इसी के साथ अब सरिता घड़ी कह रही है कि हमें कार्यक्रम को यहीं पर
1: विराम देना चाहिए। तो इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी सुनने वाले किसान भाई बहनों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: कार्यक्रम के
0: प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब गीत और गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल कव्वाली कार्यक्रम के अंतर्गत ये खूबसूरत सी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
2: जैसे?
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
2: तो लेन देन?
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए दो निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
6: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
5: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। आज करीब

0: 4,000 छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की गई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की मसौदा सूची आज प्रकाशित की गई। एसआईआर इस वर्ष 20 जून को शुरू हुआ और घर घर जाकर गिनती 30 जून को शुरू की गई। मतदाता सूची में मतदाता के नाम, ईपीआईसी नंबर, आयु, पता और रिश्तेदार के नाम आदि का विवरण है। एक रिपोर्ट।
1: मसौदा मतदाता सूची के अनुसार 1,45,10,299 मतदाताओं में से कुल 97,53,577 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। इनमें मुख्यतः पुरुष 49,88,993, महिलाएं 47,64,137 और 18 से 19 वर्ष के बीच 1,03,870 मतदाता हैं। नागरिक co.gov.in से मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दावे और आपत्ति 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकती है। यदि कोई निर्वाचन निर्दिष्ट अवधि 30 जून से 17 अगस्त 2026 के भीतर अपना भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा करने में असमर्थ रहा हो तो वह दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान शामिल किए जाने के लिए निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र 6 दाखिल कर सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली मौजूदा पेपर बेस्ड पिंक टिकट व्यवस्था को अगले महीने की 17 तारीख तक बढ़ा दिया है। ये फैसला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आधारित सिस्टम में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने और आने वाले त्योहारों के दौरान महिला यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस बढ़ी हुई व्यवस्था से महिलाएं ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी मुफ्त बस यात्रा का फायदा उठा सकेंगी और इसके बाद पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 19 लाख महिलाओं ने पहले ही इस कार्ड के लिए अप्लाई या रजिस्टर कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत दो निजी कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य फ्लाईओवरों के नीचे और उनके आसपास मौजूद उपेक्षित या कम उपयोग वाले स्थानों को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और नागरिकों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: इस साझेदारी के अंतर्गत स्वच्छता, हरियाली, सौंदर्यकरण, सुरक्षा, पैदल आवागमन को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पहली कंपनी के पहल के अंतर्गत दीपाली चौक से मंगोलपुरी मार्केट तक 2.5 किलोमीटर के स्थानों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित सामुदायिक स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं दूसरी कंपनी द्वारा मथुरा रोड और एमपी मार्ग के आसपास के करीब 2 एकड़ की ग्रीन बेल्ट के विकास और दीर्घकालिक रखरखाव की पहल की जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ पहलों से दिल्ली के प्रमुख कॉरिडोर की सुंदरता और पहचान बेहतर होगी, हरियाली बढ़ेगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे। वहीं दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार अकेले सारा काम नहीं कर सकती है और अगर सरकार के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी हो तो काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
4: सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, सरकार के साथ में पब्लिक पार्टनरशिप भी हो तो और काम अच्छे से हो सकता है। बहुत सारे एनजीओ से हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो दिल्ली को सुंदर बनाना चाहती हैं और ये हमारा पहला एमओयू नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पीएसयूज के साथ में एमओयू किया और हर जगह पे आप ये देख रहे होंगे दिल्ली की जनता को फर्क दिखाई दे रहा होगा कि रोड के साइड में नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन हो रहा है और अच्छा उसको सुंदर बनाया जा रहा है।
3: श्री सिंह ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और निजी क्षेत्र की यह साझेदारी आगे भी इस प्रकार से मजबूत होती रहेगी, साथ ही मिलकर दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के संकल्प को नई गति मिलेगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में निगम के स्वच्छता सुपरवाइजर कर्मचारियों के साथ ओपन हाउस बैठक की। इस बैठक में स्वच्छता कर्मचारियों ने आयुक्त के समक्ष शहर को स्वच्छ बनाए रखने से संबंधित अपनी समस्याएं, सुझाव और विचार रखे। इस अवसर पर श्री खिरवार ने कहा कि वर्तमान मानसून का सीजन एमसीडी के लिए बेहतर रहा और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ये निगम के लिए सबसे अच्छे मानसून सीजन में से एक रहा है। उन्होंने मानसून के दौरान स्वच्छता

0: बनाए रखने और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने में योगदान के लिए स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। राजधानी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महापौर प्रवेश वाही ने आज दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने विजय कैंप में निर्माणाधीन फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को फिक्स्ड कॉम्पैक्टर को जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ई वेस्ट के बेहतर प्रबंध को लेकर सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को मॉडर्न सुविधाओं से लैस स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली में ई वेस्ट के सही कलेक्शन, सेमिग्रेशन, डिसमेंटलिंग और रिसाइक्लिंग के लिए साइंटिफिक फैसिलिटी स्थापित करने के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज टोडापुर के यातायात पुलिस के कामकाज की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और जाम वाले स्थानों पर समय रहते जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के राजा विहार नया रास्ता में नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस नई सीवर लाइन के निर्माण से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय निवासियों को सीवर संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी। जाफराबाद स्थित एक निजी डे केयर और प्ले स्कूल में 3 वर्षीय बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित स्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित बच्चे के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बवाना क्षेत्र में 3 वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ दुष्कर्म पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मामले में स्कूल बस चालक के कथित रूप से शामिल होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अदालत ने ये निर्देश एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच दिया है। वर्ष 2013 में भी एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग DPL क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के 183 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। साउथ दिल्ली के लिए अंकित डबास 34 गेंद पर 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए अंकित डबास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कला, संस्कृति और भाषा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में पुस्तकालय की सेवाओं को अधिक जन उपयोगी बनाने और नए विचारों को धरातल पर उतारने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज और लॉ सेंटर के छात्रों ने दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी मुलाकात कर उनसे

0: संवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि खुली बातचीत, विचारपूर्ण सवालों और नए विचारों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज के युवा लोकतंत्र को लेकर जिज्ञासु हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए दो निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है ठीक 8:00, ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं महालक्ष्मी की आवाज में गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन

0: सदस्यों शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग

0: बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
1: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान, नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with the leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy, calling for safeguards.

0: Olomouc tournament in Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denny Kozul of Slovenia 3-1 in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900. Over 4,000 remain missing. And Lionel Messi announces retirement from international football. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आज़ादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिज़ जमहूरिया और आर्मेनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म कल SCO समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP आलमी उथल पुथल के बावजूद रवां माली साल की पहली सहमाही में 7.8% तक पहुंच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाज़े का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक माहदे पर पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावुज़ कर गई है। राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4,000 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी ने बैनुल अक्वामी फुटबॉल से सुबुकदोशी का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जमहूरिया किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO सरबरा इजलास के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की। बातचीत में भारत और रूस के दरमियान दोतरफा तआवुन के अहम शोबों तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: यूक्रेन तनाजे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की सिमत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबरा इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनाकिद होगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज शराकतदारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ भी दोतरफा मीटिंगें कीं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान के साथ

0: जापारोव ने दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ का जायजा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म मोदी और आर्मेनिया के उनके हम मनसब निकोल पेशिनियान ने दिफा, मईशत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की। आज वस्ती एशियाई मुल्क के अपने दौरे के पहले दिन वज़ीर आज़म मोदी ने बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अराकीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर भारत के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 4 वफूद मौजूद थे। जमहूरिया किर्गिस्तान के कल अपने दौरे के आखिरी दिन वज़ीर आज़म मोदी शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबरा इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी कल उज़्बेकिस्तान का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद बिश्केक पहुंचे थे। भारत की असल जीडीपी में माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता साल इसी सहमाही में 6.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। भारतीय मईशत ने नासाजगार हालात के बावजूद तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा है। नॉमिनल जीडीपी में भी मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में 10.3% का इजाफा दर्ज किया गया है। आदाद शुमार और प्रोग्राम के निफाज की वजारत ने आज मौजूदा माली साल में अप्रैल से जून तक की पहली सहमाही में जीडीपी के तखमीने जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी को मिसाली और बड़ा कारनामा करार दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कामयाबी तेल की कीमतों के दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई ताकत और मजबूती की अक्कासी करती है। इस दौरान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस मजबूत कारकर्दगी का सहरा मुल्क के अवाम और उनकी सख्त मेहनत को जाता है। वजीर खजाना ने कहा कि NDA सरकार की जानिब से की गई असलाहत और मईशत के मौसर और पायदार इंतजाम के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। खिदमात की पैदावार के इशारे ISP के तहत जून 2026 के दौरान 19 में से 18 ज़ैली शोबों में सालाना बुनियाद पर इजाफा दर्ज किया गया है। 8 शोबों में 2 हिंसे की शरह नमू दर्ज की गई है। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत की जानिब से जारी करदा ज़ैली शोबा जाती RZ ISP आदाद शुमार के मुताबिक रियल इस्टेट का शोबा 24.7% की शरह नमू के साथ सबसे आगे रहा, जबकि खुर्दा कारोबार में 18% का इजाफा हुआ। थोक कारोबार में 15.1%, इंतजामी और माविन खिदमात में 14.4% और IT और कंप्यूटर से वाबस्ता खिदमात में 13.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब फिजाई नकल हमल वाहिद जैली शोबा रहा जिसमें कमी दर्ज की गई। इस शोबे में पिछले साल की इसी मुदत के मुकाबले 6% की गिरावट दर्ज की गई। ISP एक मुकर्रा बुनियादी साल के मुकाबले में बाजाब्ता खिदमात के शोबे की पैदावार के हजम में मुख्तसर मुद्दत की तब्दीलियों को जाहिर करता है। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत ने कहा कि आदाद शुमार के मियार और दायरे कार का जायजा लेने के लिए खिदमात की पैदावार के महाना इशारिये आजमाइशी बुनियादों पर जारी किए जा रहे हैं। सोन नदी के पानी की तकसीम के मामले पर बिहार और झारखंड के दरमियान आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और जल शक्ति के वजीर CR पाटिल भी मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड के दरमियान इस माहदे से मशरकी भारत में लंबे अरसे से जारी पानी का मसला हल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस माहदे से बिहार और झारखंड के देही इलाकों में लाखों किसानों को आबपाशी के लिए पानी दस्तियाब होगा। इसके साथ ही आवाम के लिए पानी पीने का पानी भी फराहम किया जा सकेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि टेक्सटाइल और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का अहम जुज है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। सदर जमहूरिया आज दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रही थी। मोहतरमा मुर्मू ने तलबा से कहा कि वो मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे और इकदार से जुड़े रहते हुए आलमी नुक्ते नज़र को अपनाएं। फैशन इंडस्ट्री में खवातीन के बढ़ते हुए रोल पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तकरीब में मौजूद तकरीबन 4,000 तलबा में लगभग 85% खवातीन हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता

0: और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप ना केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: सुधीर जमहूरिया ने कहा कि भारत में फैशन और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मोहतरमा मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वह मुल्क के रिवायती टेक्सटाइल विरसे को जदीद बाजारों और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अपने इल्म, महारत और तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को फ़रोग देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के खर्च से सेमिकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। नई दिल्ली में सहाफ़ियों को जानकारी फराहम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से आने वाले बरसों में भारत आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर सनत में तकरीबन 10% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में उसका रोल मजीद बढ़ सकता है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में वेफर्स की तैयारी से लेकर चिप की पैदावार तक मजबूती से शामिल करने पर मरकूज है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 के तमाम 6 अहम बुनियादी अज्जा का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जनाब वैष्णव ने कहा कि आलमी सेमीकंडक्टर सनत के शराकतदारों में इस बात का एतमाद बढ़ रहा है कि आने वाली दहाइयों में बड़ी सरमायाकारी के लिए भारत एक मौजू और पसंदीदा मकाम है। इस दौरान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA ने आज सेमिकॉन 2.0 के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए इसे सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अहम पेशरफ करार दिया। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि ये जामे हिकमत अमली भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को नुमाया तौर पर मजबूत और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को रागिब कर सकती है। इसके अलावा आला कदर वाली मुलाजमतें पैदा कर सकती है और भारत को एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकत दार के तौर पर मजीद मुस्तहकम कर सकती है। IESA के सदर अशोक चंदक ने कहा कि भारत अब अपनी साख कायम करने के मरहले से आगे बढ़कर हकीकी सलाहियत पैदा करने की जानिब गामजन है और मजकूरा पॉलिसी का तसलसल इस सफर को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगा। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद बचाव कार्रवाई में मसरूफ सिक्योरिटी एहलकारों को खसूसी आलात, लाशों के लिए थैलों, रस्सियों और हेलीकॉप्टरों की कमी के बायस शदीद मुश्किल का सामना है। बावर किया जाता है कि यह सैलाब 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सरहद के करीब बर्फ और चट्टानों के तोदे गिरने के सबब आया। सैलाब ने भोटेकाशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में घरों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया और पनबिजली प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुंचाया। कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने इस सैलाब को गैर मामूली तबाहकुन कुदरती आफत करार दिया है। तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी एहलकार बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ है। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत के कामों और मुतासिरों की शनाख्त में मदद के लिए खसूसी टीमें तैनात की हैं। 19 रुकनी भारतीय फॉरेंसिक टीम ने कल काठमांडू में इंसानी लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट में मदद फराहम करने का काम शुरू कर दिया। लायनल मेसी ने आज बैनुल अख्वामी फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए उनका 20 साल तवील करियर इख्तिताम पजीर हुआ। उनके करियर में वर्ल्ड कप की जीत, 2 मरतबा कोपा अमेरिका का खिताब और अपने मुल्क के लिए रिकॉर्ड 207 मैच शामिल हैं। मेसी ने कहा कि रिटायरमेंट का फैसला वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद से उनके जहन में था, लेकिन वालिद की वफात ने उन्हें मजीद यकीन दिलाया कि अब लगभग रिटायर होने का वक्त आ गया है। 39 साल मेसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी एक बयान में इस फैसले का ऐलान करते हुए तस्दीक की कि फुटबॉल की तारीख से सबसे मशहूर बैनुल अक्वामी करियर्स में से एक के बाद वो अब अर्जेंटीना की जर्सी नहीं पहनेंगे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाज रानी की आज़ादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने किर्गिज़ जमहूरिया और आर्मेनिया रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म कल SCO समिट से खिताब करें।

जॉय दिगरी जा रहा हूँ मेरवाम। धन्यवाद, कल मैं एक और जगह जा रहा हूँ। ममनून, फैरदो जॉय दिगरी मेरवाम। आपके लिए कौन सा समय अनुकूल रहेगा? समय यानी वक्त या सौआत, अनुकूल यानी मुनासिब। आपके लिए कौन सा समय अनुकूल रहेगा? छ सौआत बरौ ये शुमा मुनासिब खाहद बूत। जो भी समय आपको अनुकूल हो, हर सौआती के बरौ ये शुमा मुनासिब बौशद। जो भी समय हर सौआती के आपको अनुकूल हो, बरौय शुमा मुनासिब बौशद। आप शाकाहारी हैं? शाकाहारी यानी गियाखार, किसानी के गोश्त खुर्निस्तान। आप शाकाहारी हैं? आया शुमा गियाखार हस्तीत? आप मांस मछली नहीं खाते क्या? मांस यानी गोश्त, मछली यानी माही, नहीं खाते क्या यानी आया नमी खरीद इंज क्यों यानी आया। आप मांस मछली नहीं खाते क्या? शमा गोश्त तो माही नमी खरीद। आपको अंडे अच्छे लगते हैं? अंडे यानी तोख्व मोर। आपको अंडे अच्छे लगते हैं? आया शमा तोख्व मोर रादूस दारीत। आप काफी पीते हैं? काफी यानी कहवे। आप काफी पीते हैं? शुमा कहवे भी खरीद। आप काफी पीते हैं? जी नहीं, न खैर, जी नहीं, थोड़ी सी। थोड़ी सी यानी कमी, थोड़ी सी कमी। बाद में सिनेमा चलेंगे, बाद में सिनेमा चलेंगे। बादन बे सिनेमा मी रवीम। कोई नई फिल्म आई है? आया फिल्म थौजई आमदे, फिल्म जदीदी आमदे, नई जदीद। आई है आमदे अस्त। कोई नई फिल्म आई है? नहीं, लेकिन वह काफी अच्छी है। नहीं, लेकिन यह काफी अच्छी है। ना खैर, इन बतौर खूब, काफी खूब अस्त। काफी अच्छी है, बतौर काफी खूब अस्त। रेलवे स्टेशन जाना है? बे ईस्तगाह राह आहन मीरवीम। रेलवे स्टेशन ईस्तगाह राह आहन। देर हो गई दीर शोत, देर हो गई दीर शोत। काफी समय है वक्त काफी, काफी समय है। जल्दी न कीजिए, जल्दी न कीजिए, अजल न कुनीत। जल्दी यानी अजल है, जल्दी न कीजिए। गाड़ी 10 मिनट बाद जाएगी, गाड़ी 10 मिनट बाद जाएगी। कतार पसस 10 दकीके रवाने खाहद शुद। जाएगी यानी खाहद रफ्त। मुझे बंबई के लिए एक टिकट लेना है। एक बिलेट बराओ ये बंबई में गिरम। मुझे बंबई के लिए एक टिकट लेना है, टिकट बिलेट। पहले दर्जे का बिलेट है दर्जे अव्वल। यह मेरा सामान है इन एसोसिए मनस्त। यह मेरा सामान है। गाड़ी कब आती है? गाड़ी कब आती है? कतार कई मियायत, कतार चिवाक मियायत। गाड़ी कितनी देर ठहरती है? ठहरती है यानी तवाकुफ मिकुनात। गाड़ी कितनी देर ठहरती है? कतार बराव ये चमोदत तवाकुफ मिकुनात। पीने का पानी कहाँ है? आब आशामीदनी खुजास्त। आब आशामीदनी पीने का पानी, पीने का पानी कहाँ है? गाड़ी में भीड़ बहुत है। भीड़ एजधाम जमियत जियात। गाड़ी में भीड़ बहुत है।

मैं यहाँ तू वहाँ, तरानीम शनवीद बिसदाइए अमिताभ बच्चन, असफिल्म बागबान।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्य दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकिन समेत SCO के कई नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की।

0: इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलुओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारों के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर होता जा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि हुई है और 2,911 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बताया है। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बहारों के सपने से। लता मंगेशकर की आवाज़ है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

और अब अगला गीत फिल्म जूल थीफ से किशोर कुमार की आवाज़ है, मजरूह के लिखे बोल हैं और संगीत से पिरोया है एस डी बर्मन ने।

कोई आए और आपका चेहरा खिल जाए, या फिर किसी के आने की खबर हो तो आपके चेहरे पर नूर आ जाए। जी हाँ, वही गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म आंधी से, तुम आ गए हो नूर आ गया है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है, गुलजार साहब के लिखे बोल और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म हीरा पन्ना से आपने सुना अभी ये गीत। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे। मैं कीर्ति आपके साथ। अगला गीत फिल्म बड़े अच्छे लगते हैं, माफ कीजिएगा, बालिका वधू फिल्म है, और जो गीत है उसका शीर्षक बड़े अच्छे लगते हैं, और अमित कुमार आर डी बर्मन की आवाज़ों में ये गीत आप तक आएगा। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अगला गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं, मोहम्मद रफ़ी व अन्य साथियों की आवाज़ों में, संगीत के बोल मजरूह ने लिखे थे और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं चांद मेरा दिल।

0: इसी गीत के साथ अब गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन, एसएससीओ के कई नेता ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।

0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान हो गया है। कोलकाता में कल चार संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठनों ने शहरयार कबीर, प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत, वकील राणा दास गुप्ता और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की। संगठनों ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2024 के राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West.

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: आप सुन रहे थे गीत बहार कार्यक्रम, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक थे इस कार्यक्रम में। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम

0: पूरी मानवता को नई आशा से भर देते, हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाके अब चपेट में आ गए हैं, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and

24x7 चैनल। समय हो चला है 3:33 और 12 सेकंड का। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल। कार्यक्रम में आप पेशकश है देवयानी मजूमदार की ये पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और श्रोताओं कुछ ही पलों में सुबह के 4 बजने को हैं। अब आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुनेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस शैलजा और एस सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं थिरुनयना संबंधार की रचना पीडी अदान से।

மகளிர் மகளிர்

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि प्रातःकालीन सभा में 6:10 का समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए भक्ति संगीत, साथ में होते हैं भजन, शब्द, नाथ और देशभक्ति गीत। 6:40 का समय होता है चिंतन का, जिसमें आज आप भगवान महावीर के उपदेश सुनेंगे। समय रहेगा प्रातः 6:40 का। तो ये तो हुई प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। कुछ ही पलों में सुबह के 4:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म में। आज हम लेकर आएंगे अनन्या वेंकटेशन का गायन। वायलिन पर आपकी संगति की है विदुषी जी उमा ने, और मृदंगम पर साथ दिया है विदुषी VM कन्नन ने। तो आइए सुनते हैं अनन्या वेंकटेशन का गायन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आपने अनन्या वेंकटेशन का गायन सुना। वॉलिन पर आपका साथ दिया था विदुषी जी उमा ने और मृदंगम पर साथ थी विदुषी वीएम कन्नन। यह आकाशवाणी का एआईआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। हमारे अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53

यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें आप सुनेंगे भक्ति संगीत, भजन, शबद, नाथ और देशभक्ति गीत।

चिंतन आप सुन सकते हैं प्रातः 6:40 पर। आज के इस कार्यक्रम में भगवान महावीर के उपदेश हम लेकर आएंगे इस कार्यक्रम में। हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस आप सुन सकते हैं प्रातः 6:45 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 35।

6:55 का समय रहेगा संस्कृत में समाचार का, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार के बाद 7:10 का समय होता है कार्यक्रम संगीतिका का।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित एक कार्यक्रम होता है और समय होता है प्रातः 7:30 का। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज का समय रहेगा सुबह 8:15 का और उर्दू में खबरें आप सुन सकते हैं 8:30 पर।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा का समय रहेगा प्रातः 8:45 का। आज के इस कार्यक्रम में आप अनीशा रे का राग नट भैरव में गायन सुनेंगे।

0: श्रोताओं, ये थी सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने बिश्केक में वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमैड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत का 87 सदस्य दल शामिल है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे भी इस अभियान में सहयोग कर रहा है। नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन के दौरान अधिकारी स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। इस मौके पर नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी स्पेशल ट्रेन को भी रवाना किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणता पूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए

बैठ जाएं, दोनों पैरों को साथ में रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें, बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें।